भाई एक्सरसाइजेस और ब्रेकफास्ट का जो कनेक्शन है हमारा आपके साथ, उसको जरा आगे लेकर चलें आज। जी हाँ, क्योंकि देखिए आपको तो याद रहता नहीं है कि भाई कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सुबह का हर एक रिचुअल कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ आपकी एक्सरसाइज, ना सिर्फ आपका ब्रेकफास्ट, ना सिर्फ आपका मॉर्निंग वाला ड्रिंक। नहीं, मॉर्निंग ड्रिंक से नाइट ड्रिंक पे मत पहुंच जाइए। मॉर्निंग के बड़े अच्छे ड्रिंक्स होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसमें टॉक्सिन्स नहीं डालते, है ना जी। तो बहुत ज़रूरी है कि वार्म वाटर से अपने दिन की शुरुआत करें, और हो सके तो उसमें एक लेमन का जूस जो है वो डाल लें, उसके बाद उसे पिए, और ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होने स्टार्ट हो जाएगी। आप हल्का फील करेंगे। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो आप देखेंगे कि आपकी भूख में कमी आ रही है, क्योंकि भूख तब ज़्यादा लगती है ना जब पेट में इतना कचरा होता है कि बार बार आपकी एनर्जी उसमें जाती है। और जब आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो आलस से भरती है, और उसका रीज़न यही है कि वो जो है सारी एनर्जी इसको पचाने में, जो खाया है आपने उस एनर्जी को पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी की सारी एनर्जी लग जाती है। तो इसलिए आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई ज़रूर करिए सुबह उठ के। और अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो योग ऐसा है जिसमें कई सारे ऐसे आसन हैं जो नेचुरली बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं। बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा खाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जिन्हें निकालना, रिलीज करना ज़रूरी होता है। आपका आधा पेन बॉडी का उससे कम हो जाता है, ठीक है जी। तो कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ आप लेमन वाटर और वार्म वाटर, लेमन जूस में सॉरी, वार्म वाटर तो आप एटलीस्ट ले ही सकते हैं। बहुत ईजी है ना, ट्राई ज़रूर कीजिए, और अपने दिन के अपने रिचुअल्स की शुरुआत जो है वो हेल्दी करिए ताकि आपकी लाइफ हेल्दी रह सके। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ अभी सुनेंगे, और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

तो भाई आज इस वक्त खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, खुद से, कि लोग आपके साथ चाहे जैसा भी बिहेव करें, आप उनके जैसे नहीं बनेंगे। यू नो, बदला लेना ना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद की फितरत को बचाए रखना ये बड़ा मुश्किल है और ये हिम्मत का काम है। आजकल लोग हर्ट होते हैं और फिर वही दर्द आगे बांट देते हैं, लेकिन आप अलग हैं। यू नो, काइंड रहना कोई वीकनेस तो नहीं है ना, ये तो आपकी स्ट्रेंथ है जो ये दिखाती है कि आपका दिल अभी भी साफ है। तो बस आप अपनी पहचान कभी मत खोइएगा, क्योंकि आपकी पहचान इस बात से नहीं होगी कि लोगों ने आपके साथ क्या किया, इस बात से होगी कि उनके करने के बाद भी आपने उनके साथ क्या किया। सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

अगर जिंदगी में कुछ करना है तो 10 बातें जिन्हें हमेशा याद रखिए। सबसे पहली बात कि सुबह शावर में अपने ओल्ड वर्जन को ऐसे धो डालिए जैसे आज जिंदगी की एक नई शुरुआत है। ब्रश कीजिए ऐसे जैसे डेंटिस्ट कहीं छुप कर आपको देख रहा है। कपड़े पहनिए तो ऐसे जैसे बाहर कोई फोटोग्राफर आपके एक्सक्लूसिव फोटोज को लेने के लिए वेट कर रहा है। पानी पीजिए तो ऐसे जैसे पानी के बिना किडनीज का बैंड बचा पड़ा है। और सीढ़ियां देखिए तो ऐसे चढ़ जाइए जैसे लिफ्ट तो हमेशा खराब ही रहती है। वर्कआउट करिए तो इतने शिद्दत के साथ, इतने जोश में कि आपकी क्रश कहीं दूर खड़ी हुई आपको निहार रही है। कोई किताब पढ़ो तो इतनी लगन के साथ कि जैसे अगले पेज पर बहुत सारा सस्पेंस छुपा हुआ है। काम करिए तो ऐसे जैसे बच्चे आने वाले समय में आपका नाम गूगल करेंगे और आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, आपने क्या क्या किया है जिंदगी में, वो सब कुछ वो सर्च करने वाले हैं। अपनी टीम को ऐसे लीड कीजिए कि टीम का हर एक मेंबर आप पर किताब लिखने की सोचे और आपके मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड, हर एक शब्द ऐसा हो कि अगर वो न्यूज़पेपर हेडलाइन भी बन जाए तो आपको अफसोस ना हो। जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ ऐसा कीजिए। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

चापन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी पर। हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये कभी कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई हमें क्या समझता है और हमें कैसे देखता है। देखिए, हर किसी का हमें देखने का नजरिया, हमारे बारे में सोचने का नजरिया वो उसका अपना है और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या उसने मेरे बारे में ये बात कैसे कर दी। भाई वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने कर दी तो कर दी। आप हो सकता है बहुत इमोशनल हो, आपके अंदर बहुत काइंडनेस हो, लेकिन सामने वाला समझता है कि आप बहुत रूड हैं। तो क्या आप रूड हो जाएंगे या उसकी बात को आप गलत साबित करने पर तुल जाएंगे? जनरली आप यही करते भी हैं कि आप जाकर उसे एक्सप्लेन करते हैं, जिनसे उसने ये बात कही उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं भाई हम तो ऐसे नहीं, हम तो बहुत काइंड हार्टेड हैं। तो भाई आपका जो नेचर है उसे सबको दिखाने की क्या जरूरत है? वो आपका नेचर है ना, उसे अपने तक रहने दीजिए। आप जानते हैं, ऊपर वाला जानता है, जिससे कभी आप जिंदगी में काइंड होंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, वो जानेगा और समझेगा, है ना। तो दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्थानी 1701 AM।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

यार ये बंदा ना इसे लगता है कोई और मिल गया, या कोई और है जिसके साथ आज ये बातें करें, ये जो मैसेज मेरे पास आते थे आजकल कहीं और जा रहे हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका रीजन ये है कि उस बंदे ने अब चुप रहना सीख लिया है। वो क्या है ना कि वो मैसेज करता है और आप रिप्लाई नहीं करते हैं, वो आपको प्यार दिखाता है, आप पलट के उस प्यार का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आप हमेशा ये प्रिटेंड करते हैं कि आपके पास भाई साहब वक्त नहीं है, और वो बंदा जो है वो वेल्ला बैठा हुआ, उसके पास वक्त ही वक्त है। तो देखिए आज की दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं जिसके पास वक्त ना हो, आप उसकी प्रायोरिटी हैं और शायद उसके काम से थोड़ा ऊपर ही रखा है उसने आपको, इसलिए उसके वो मैसेजेस आते थे। मगर अब शायद वो शिकायत नहीं रही, अब शायद वो शिकवा नहीं रहा, अब शायद आंसू थम गए हैं, इसलिए वो मैसेजेस आने भी बंद हो गए हैं। तो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर लीजिए अगर आपके लिए भी वो इंसान वो बंदा इंपॉर्टेंट है। तो सिताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701 AM।

हेलो फ्रेंड्स, ये था आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और बढ़िया सा साथ। और आज हमने कुछ जिंदगी के बहुत ही बेहतरीन किस्सों को सेलिब्रेट किया, बातें की और एक दूसरे के साथ इन पलों को जिया। आई रियली होप कि आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो कल कुछ और बातों, गानों और हमारे आपके बेहतरीन जज्बातों के साथ फिर से करेंगे कल की मॉर्निंग की शुरुआत। आज के इस मॉर्निंग के सफर से यानी कि इट हैपेंस से सताक्षी को दीजिए विदा। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao, ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल, मदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रथक भजन। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milde hai ji, Brisbane.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। हां तुसी बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 एमते जी। आज संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो, ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तां तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिसोनी 101 एम साडा फेसबुक पेज है, ते brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। खैर तुहानूं पता ही है, बार फिर भी मैं हर रोज दस दिनी हुनी हां ताकि तुसी किते भुल ना जाओ जरा भी। ते जुड़दे रहो साडे नाल, रखो अपनी फरमाइशां, करो साडे नाल दिल दीआं गल्लां, ते मैं तां गाणे तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी ना। जरूर जरूर जरूर सुणाउंगी। ते चलो फिर तुसी इन गीतां नूं इंजॉय करो, मैं हुणे वापस आई।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिसवानी 101 एम ते जी अच्छे संदेश अलग दिन बने हुए हो। होप तुसी इन गीतों नूं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैगे हो। तो इसे तरीके दे नाल सोहणे सोहणे गीत मैं अगे भी तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी नाले करदी रहूंगी गल्लां। तां हुण गल्लां करिए ना जे आपां तां बॉलीवुड दे विच बहुत कुछ खास हुंदा हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। तां मैनूं इंटरस्ट बॉलीवुड दे विच है क्योंकि बॉलीवुड दी फिल्मां इन्नियां सोहणियां आ रहियां हैगियां ना। तां सोचिया कि तुहानूं वी दस्सां। देखो पिछे चलदे हैगे आ 1780s 90s दहाके दे सुपरस्टार्स नूं दर्शकां दा बेहिसाब प्यार मिलिया। राजेश खन्ना तो लैके कुड़ियां दी दीवानगी किसे तो छुपी नहीं है कि वह जिस रास्ते चो लंघदे सीगे ना उत्थों दी धूल नाल कुड़ियां अपनी मांग भर लैंदियां सी। राजेश खन्ना तो बाद धर्मिंदर अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा ऋषि कपूर अते मिथुन चक्रवर्ती नूं वी दर्शकां ने खूब प्यार दिता। पूरे तीन दहाकियां तक इन्हां सितारियां दा बॉलीवुड इंडस्ट्री विच जलवा रहा। इस विचों सिर्फ दो स्टार्स दे बेटे बेटियां नूं ना इंडस्ट्री विच सफलता मिली है। ओ सुपरस्टार ते उन्हां दे बेटे कौन ने उन्हां बारे दसूंगी तुहानूं, पर पहला सुणाउंदी आं गीत।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Sat Sri Akal, madam, namaskar, dosto, main hoon toda Prathak Pandit. Ek baar phir सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन डिस्टेंस
4: सैटरडे 15th अगस्त 6:30 PM
2: मिलदी है जी ब्रिस्बेन विच
4: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।

जी अनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो तो सब तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। तो देखो राजेश खन्ना का असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड के डेब्यू किया। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया। राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक 17 तो ज्यादा हिट फिल्मां दित्तियां सी। उन्होंने कटी पतंग इतफाक डोली बंधन दो रास्ते खामोशी ते द ट्रेन सच्चा झूठा सफर आनंद आन मिलो सजना अंदाज मर्यादा हाथी मेरे साथी महबूब ते छोटी भाभी वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां सीगियां। 1974 तो उन्हां दा डाउनफॉल शुरू होया सी। फिर उन्होंने 1980 के दहाके विच वापसी की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया 1973 विच ब्याह किया। ब्याह तो बाद उन्होंने दो बेटियां ट्विंकल खन्ना ते रिंकी खन्ना होईयां सी। इन्हां बारे दसना थोनू इनी दसना जरूरी हुंदा ना छोटिया छोटिया चीजा दसनिया बहुत ज्यादा जरूरी हुंदिया। बेटियां बारे दस दी पर पी लैं की सुनू।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Sadum Seah, Sadum Seah.

जी आनू जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सर ओआरएम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो राजेश खन्ना दिया दोनों ही बेटिया ने बॉलीवुड विच किस्मत अजमाई, दोनों नू निराशा भी हाथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड विच डेब्यू किया। डेब्यू फिल्म तो सुपरहिट रही पर इस तो बाद आने वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना इतिहास इंटरनेशनल खिलाड़ी जुल्मी बादशाह मीला वर्गिया फिल्मों में काम किया। ट्विंकल की भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड विच कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी मुझे कुछ कहना है वर्गिया फिल्मों में काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना तो फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह किया तो उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.9 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो हुण गल करदे हैं कि 70 ते 80 यानी कि 70s 80s के दहाके के सब तो वड्डे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने 2000 रिफ्यूजी फिल्म करीना कपूर के बॉलीवुड में डेब्यू किया। जेबी दत्ता के निर्देशन विच बनी यह फिल्म कुछ खास नहीं कमाल कर सकी। अभिषेक बच्चन के करियर की शुरुआत दी 14 फिल्मा फ्लॉप या डिजास्टर रही। उधर 2004 धूम फिल्म तो उन्होंने सफलता का स्वाद चक्या है। फिर बंटी और बबली, धूम 2, गुरु हिट रही, धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल 3 वर्गे मल्टी स्टारर फिल्मा विच उन्हां दा काम सराया गया, पर वह सोलो हिट देण विच फेल रहे। अभिषेक बच्चन भी अपने पिता वर्गे स्टार नहीं दोहरा पाए, पर अज भी स्ट्रगल कर रहे ने।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सिखियां।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: मेनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: Yes, welcome back. एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। देखो जितेंद्र दी एक तीवी हैगी है, बेटा नहीं कमाल कर सकिया, बेटी ने कीता हैगा एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर टीवी दी दुनिया दी क्वीन कहलाई जांदी है। उन्होंने तुषार कपूर तो ज्यादा उन्होंने सफलता मिली है। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी दे बैनर तले एक तो वध के एक सीरियल प्रोड्यूस कीते। एकता कपूर ने हम पांच, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, कुसुम कहीं तो होगा, कसम से पवित्र रिश्ता बड़े अच्छे लगते हैं, ते जोधा अकबर वर्गे कई सीरियल्स बनाए। तुषार कपूर ते एकता कपूर ने विआह नहीं किया। तुषार कपूर जो 2016 सैरोगेसी ते आईवीएफ के जरिए एक बेटे के पिता बने, सिंगल फादर बने। तुषार ने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है। तुषार कपूर की भैन एकता कपूर ने भी 27 जनवरी 2019 सैरोगेसी के जरिए बेटे रवि कपूर को जन्म दिया। सिंगल मदर बनी, उन्होंने अपने पिता जितेंद्र के असली नाम ते बेटे का नाम रखा।

धर्मिंदर ही कलौते अजिहे स्टार है जिन्हां दे वड्डे बेटे सनी देओल दा करियर बेहद सफल रहा। सनी देओल ने 1983 दी बेथा फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया। फिर अर्जुन, घायल, दामिनी, घातक, बॉर्डर, गदर एक प्रेम कथा, गदर टू, बॉर्डर टू वर्गियां ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां। सनी देओल ने अपने दम ते सोलो हिट दित्तियां ने। उधर उन्होंने भरा बॉबी देओल ने करियर की शुरुआत 1995 बरसात फिल्म नाल कीती सी। मूवी सुपरहिट रही, फिर सोल्जर, गुप्त वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां, पर इस तों बाद उन्होंने नसीब उन्हां तों गुस्से हो गया। बॉबी ने फ्लॉप फिल्मां दी लाइन चुन ली। पूरे 15 साल फ्लॉप करियर का दौर चुनिया। 2019 विच उन्हां दी किस्मत पलटी ते ओ नेगेटिव रोल्स करन लग गए। एनिमल मूवी विच उन्हां दा छोटा जिहा रोल दर्शकां दे दिल नूं छूकिया।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रधानपति। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milte hain ji Brisbane
4: at Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बन द्वारा अधिकार।
7: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

देखो वेला हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर एक हो सुपरस्टार की गल करनी रह गई सी, तो सोचा उन्हों की गल भी जरूर कर ला ते उन्हों की गल कर लैनी है जी। तो सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू किया सी। उन्हां ने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मां दित्तियां सी। अपनी छवि चॉकलेटी रही हैगी उन्हां दी। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने अपने पिता की विरासत नूं अगे संभालिया है। वह अपने पिता नाल तो दो कदम अगे निकल गए। रणबीर कपूर ने 2007 सावरिया मूवी दे नाल डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही पर उन्होंने संघर्ष किया, फिर बहुत सारिया फिल्मां कीतियां ते ब्लॉकबस्टर रही। रणबीर कपूर के टैलेंट ते कामयाबी ते पूरी इंडस्ट्री ने मान ली हैगी, असी भी मान गए हैगे। तां इह कुछ सितारे हैगे ने, उन्होंने बच्चे ने जिन्हां ने की किया थानू दस्या है। बाकी तुसी की किया सारा दिन तुसी जरूर दस्या करो, साडे नाल जुड़ते रह करो। रेडियो बिरसोनी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, बिरसोनी @bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी अपनाउणा अपना लो, साडे नाल पता जरूर करते रह करो। बाकी अपना ख्याल रख्या करो ते मैं तां इही कहना कि कल करांगे मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां थोड़ा अपना हरप्रीत। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी तुहाडे कोल आ रहे हैं।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी तुहाडे कोल आ रहे हैं।
1: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
2: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
0: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन
2: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और दोस्तों, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, ट्यूसडे का दिन, और दिन जो है वो भी खास है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि खास क्यों है? अरे खास होना जरूरी है क्या? मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज होगी तभी खास होगा क्या? ऐसे भी तो खास हो सकता है, राइट? मतलब हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हम आपसे मिलकर इतनी खूबसूरत सी वाइब यहाँ बना रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही खास चीज है। एंड दैट इज वाई आई से हर दिन खास है, हर एक पल खास है, और हर एक पल को आपको जिंदा दिली के साथ जीना है। जी हाँ, जिंदगी को सिर्फ काटना नहीं है, जीना है। अब आज ट्यूजडे है तो ऑफकोर्स मुझे आपको मोटिवेट भी करना चाहिए, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मोटिवेशन हमने मंडे को जो दी है उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है आपको ट्यूजडे को। और एक और चीज है आपको करनी है, और वो क्या है? वेल, हर एक पल को जीना है। जी हाँ, मैं ये क्यों कहती हूँ, क्योंकि कभी कभार हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। और जब हम सफल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमें याद आता है कि ओह, अब तो हमें वो सारी चीजें करनी थी जो हम करना चाहते थे, लेकिन वो वक्त निकल गया। क्योंकि कुछ चीजें कुछ पर्टिकुलर वक्त में ही होती हैं। एंड दैट्स व्हाई आई से कि अपने आप को सक्सेसफुल बनाना जरूरी है, लेकिन बनाना अपने आप को खुश और भी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक हेल्दी रिचुअल के साथ। और वो हेल्दी रिचुअल क्या है? वेल, ऑफकोर्स दैट इज डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। करते हैं सबसे पहले। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ट्राई इट, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों मैं कहती हूँ इसे इतना खास रिचुअल। जी हाँ, तो आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। और जुग्राफिया है गाने का नाम, और ये एक बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल मूवी से है। मूवी का नाम है सुपर 30। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और अगर आप ऋतिक फैन हैं फिर तो आपने मोस्ट प्रोबेबली देखी होगी। सुनते हैं गाने को और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खूबसूरत गाने तो शुरू हो गए हैं। अब जरा हम चलते हैं सीधा मौसम की तरफ, रुक करते हैं क्या कह रहा है वेदर, क्या कह रहा है टेम्परेचर और क्या कह रहा है मौसम। जी हाँ, आज की बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, अभी की बात की जाए तो 22.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 18.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, नो चांसेस ऑफ बारिश मैं पहले ही बता चुकी थी। आज का मौसम बहुत ही खिला खिला सनी सनी रहने वाला है और ऐसा ही हुआ। और रात के टेम्परेचर की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे और एयर क्वालिटी है एकदम फेयर, मतलब मजेदार। जी हाँ, और ये है ट्यूसडे का हाल। वेडनेसडे का भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ने वाला है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा और 50% चांसेस जो है वो कल के लिए बताए गए हैं। लेकिन मुझे बादल नहीं दिख रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से सूरज जो है वो खिलखिलाया हुआ नजर आ रहा है। सो लेट्स सी क्या चेंजेस उसमें आते हैं। वहीं थर्सडे को अगेन सूरज जो है वो खिला खिला मुझे नजर आ रहा है विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम और नो चांसेस ऑफ बारिश, मतलब कल जो है वो 50% यानी कि 50% चांसेस है बारिश के। और वो वही मतलब है कि कुछ जगहों पर होगा और कुछ जगहों पर नहीं होगी, और उसमें भी फेरबदल जो है वो हो सकता है। सो ये है मौसम का हाल, जो कि बिल्कुल भी नहीं है बेहाल। तो एंजॉय कीजिए, लेकर निकलिए माल। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हैं माल कौन सा माल, अरे आपको तो पता ही है राइमिंग बनाने के लिए कुछ भी कर देते हैं लोग, मैं भी वही कर रही हूँ। लेकिन लेकिन लेकिन डोंट वरी, मैं शायरी करने की कोशिश फिर से नहीं करूंगी। आप एक और गाना, मजेदार सा गाना सुनिए और फिर करते हैं और बातें।

जी दोस्तों, ऐसे के साथ कल ही की बात है, मैं इंटरनेट स्क्रॉल कर रही थी, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और वहां पर मुझे एक रील दिखती है जिसमें बहुत ही अच्छे से बताया जाता है कि कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा बड़े समर हॉलीडेज देती है। अब आप लोग बोलोगे कि है नहीं भैया, ये तो बहुत ही पते की बात है, बट जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे स्कूल में रहें तो ही ज्यादा भलाई रहती है, उनके लिए जो है ये वाला पार्ट नहीं है, ये आप जो है स्किप कर सकते हो। मजाक कर रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बच्चों के लिए जो छुट्टियां होती है ना, मतलब छुट्टियों में उनको जो मजा आता है, छुट्टियां लंबी हो तो और भी ज्यादा मजा आता है। जी हाँ, सो यहां पर अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन सी कंट्री जो है वो सबसे कम हॉलीडेज देती है, और सबसे कम हॉलीडेज तो बहुत सारी कंट्रीज देती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री देती है हॉलीडेज। एंड यू कांट इवन इमेजिन, समर हॉलीडेज की बात हो रही है और कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा हॉलीडेज देती है, आपने मजा आता है, छुट्टियां लंबी हो तो और भी ज्यादा मजा आता है। जी हाँ, सो यहां पर अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन सी कंट्री जो है वो सबसे कम हॉलीडेज देती है, और सबसे कम हॉलीडेज तो बहुत सारी कंट्रीज देती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री देती है हॉलीडेज। एंड यू कांट इवन इमेजिन, समर हॉलीडेज की बात हो रही है और कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा हॉलीडेज देती है, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो उस

ऑस्ट्रेलिया में जो विंटर ब्रेक्स होते हैं वो भी कुछ इतने ही होते हैं, राइट? मतलब 5 से 6 हफ्तों का ही जो है ब्रेक होता है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर समर ब्रेक इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन विंटर ब्रेक जो है इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ का जो समर ब्रेक है जो कि दिसंबर जैन और फरवरी की स्टार्टिंग के तक आता है, वो जो है वो थोड़ा लंबा होता है, जो कि अराउंड अगेन 5 से 6 हफ्ते का होता है। लेकिन हमारे अलावा यहाँ इस दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत लंबे लंबे ब्रेक दे रही हैं, एंड यूके जो है वो 6 हफ्ते का ब्रेक देता है, अगेन जस्ट ऑलमोस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, उसके बाद अगर बात की जाए यूएस की, यूएस कह रहा है कि हम तो अपने बच्चों को यहाँ पर, अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर 10 से 11 हफ्ते का ब्रेक देते हैं समर। जी हाँ, समर ब्रेक 10 से 11 हफ्ते का। एंड आई वॉज लाइक वाओ, मतलब 2.5 महीने की छुट्टी, क्या बात है। जी हाँ, अभी यूएस इस लिस्ट में आया था, उसके बाद आता है रोमेनिया। जी हाँ, वो भी कहता है कि हम भी 11 वीक्स के अराउंड देते हैं। उसके बाद आता है ग्रीस, कहता है कि हम भी 12 वीक्स के अराउंड जो है यहाँ पर देते हैं। अभी ये सारी की सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ बहस कर ही रही थी, डिबेट कर ही रही थी कि वहां पर इटली जो है वो एंट्री मारता है। इटली कहता है कि अरे आप लोग बस इतनी छुट्टियां देते हो, हमारी सुनो, हम 14 वीक्स की, यानी कि 14 वीक्स की जो है वो छुट्टी देते हैं यहाँ पे। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि 14 वीक, मतलब ये कितने हुए, 4 और 4 8। जी हाँ, और 8 और 4 12, और उसके बाद मतलब 3.5 महीने की छुट्टी, समर ब्रेक। मतलब वहां के स्टूडेंट्स बोलते होंगे ये ला ला ला। जी हाँ, मतलब मैं अगर स्टूडेंट होती तो मुझे भी इटली जाने का मन करता, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी किसको बुरी लगती है, खासकर स्टूडेंट्स को। ऑल्दो पेरेंट्स का कोई नहीं सोचता, क्योंकि वो 3.5 महीने की छुट्टी पेरेंट्स का हाल जो है वो बेहाल कर देती है। और पेरेंट्स को तो यही लगता है कि हमारे बच्चे जितना स्कूल में रहे उतना ही अच्छा है, हमारी मेंटल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सारी हेल्थ के लिए। जी हाँ, आप भी ऐसा ही सोचते अपने बच्चों के बारे में तो जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन यहां पर अभी इटली कह ही रहा था कि हम, लगता है कि सबसे ज्यादा छुट्टी हम अपने स्टूडेंट्स को देते। गेस कीजिए, इटली को पीछे छोड़ के एक कंट्री है जो कि बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन वो अपने बच्चों को, यानी कि वो अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा छुट्टी देती है, विच इज 15 वीक्स, 15 लॉन्ग वीक्स। जी हाँ, एंड दैट्स बुल्गारिया। या आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहां पर बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में बुल्गारिया जो है वो एंट्री मारने वाली है, बट या दैट्स व्हाट हैपेंड। बुल्गारिया जो है वो अपने स्टूडेंट्स को 15 हफ्ते की छुट्टी देती है। अब आप लोगों के बच्चे अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो कहीं वो अपने बैग्स पैक करके बुल्गारिया जाने की तो नहीं सोच रहे? हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर मुझे बताइएगा यहाँ पे। और एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रणत भजत। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

0: आए असी बुले न समाए साडे घर तशरीफ ले आया नू साडे सारे वलों जी
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी एंड मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जनी बिया। प्रोग्राम चल रहा है इवनिंग वाइब। जी हाँ, और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं और उसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बहुत ही वाइज इंसान ने ये लाइन्स, ये विजडम हमें बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन हम उस विजडम का इस्तेमाल नहीं करते, हमने उस विजडम को फॉलो नहीं किया। जी हाँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट द लेजेंडरी रूमी। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हाफ ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन चार्मिंग अदर्स। जी हाँ, हाफ ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन चार्मिंग अदर्स, द अदर हाफ इज लॉस्ट इन एंग्जाइटीज कॉज्ड बाय अदर्स। लीव दिस प्ले, यू हैव प्लेड इनफ। जी हाँ, एंड यू आर गना बी सो फ्री। That's what it is about. जी हाँ, मतलब ये बात कितनी सही है कि हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है वो दूसरों को चार्म करने में, दूसरों को अच्छा फील करवाने में निकाल देते हैं और आधी जो दूसरी आधी है उसको हम दूसरों की वजह से जो हुई हमें एंजाइटी होती है और जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं उनमें जो है वो निकाल देते हैं, उसकी भी वजह दूसरे ही होते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर हम ये सब कुछ छोड़ दें, ये सारी की सारी गेम जो है छोड़ दें, तो क्या होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत खेल लिया है। जी हाँ, और रूमी ने ये बहुत ही अच्छा कहा है कि हाफ ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन चार्मिंग अदर्स, द अदर हाफ इज लॉस्ट इन एंजाइटीज कॉज्ड बाय अदर्स। लीव दिस प्ले, यू हैव प्लेड इनफ। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, हैव फन, लिव योर लाइफ एंड दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ लिविंग। जी हाँ, एंड आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। रूमी ने जो कहा है इस पर जरूर गौर कीजिएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि क्या बात है भाई, लॉटरी हमारी कब लगेगी। जी हाँ, आप लोग बोलोगे तो बोलेंगे वेल वेल वेल, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ लॉटरी की ही। जी हाँ, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी वायरल इंसिडेंट जो कि लिटरली बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और वहां पर यही जो है वो कहा गया है कि एक लेडी जो कि इटली की है, वो एक लॉटरी टिकट जो है वो खरीदती है और उस लॉटरी टिकट का जो नंबर होता है वही प्राइज वाला नंबर होता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है, क्योंकि उसे जो शॉप है वो बोल देते हैं कि यू नो व्हाट, दिस टिकट एंड दिस नंबर इज अनपेबल, और वो गलती से उस टिकट को फेंक देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो टिकट जो है उसमें जो नंबर है वही विनिंग नंबर है, और वो टिकट जो है वो लॉटरी जो है वो लिटरली $1 million से ज्यादा की है। मतलब उनकी जो लॉटरी लगती है वो $1 million से ज्यादा की लगती है, लेकिन तब तक वो लेडी जो है उस टिकट को फेंक चुकी होती है गलती से या गलती के बिना गलती के, एंड उस टिकट को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गेस व्हाट, गेस व्हाट, इटली में सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं, एक टीम जो है सैनिटेशन वर्कर्स की, वो आती है और वहां पर उस सारे कचरे को खंगाला जाता है, पूरी तरह से देखा जाता है, और फिर उस लेडी की वही टिकट जो कि लिटरली $1 million से ज्यादा की वर्थ की है वही टिकट मिल जाती है और उस लेडी को प्राइज भी मिल जाता है। आप लोग बोलोगे कि ये इसे कहते हैं अगर किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा। जी हाँ, मतलब किस्मत में होगा तो मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कचरा भी नहीं रोक सकता। लिटरली सैनिटेशन वर्कर्स ने पूरी तरह से कचरे को इधर से उधर कर दिया और उस टिकट को निकाल लिया और उस लेडी को सौंप दिया। अब आप लोग बोलोगे कि कहाँ मिलते हैं इतने जबरदस्त और इतने मेहनती सैनिटेशन वर्कर्स, बट द थिंग यहां पर आपको जो गौर करने वाली जो चीज आपको मिलेगी वो ये है कि टिकट मिल भी गई। जी हाँ, मतलब इतने सारे कचरे में कोई भी चीज ढूंढना जो है, और एक छोटी पेपर जैसी चीज जो है ढूंढना जो है वो कितना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर उस लेडी को टिकट मिल गई और वो टिकट में वो प्राइज जीत गई और अब वो माला माल हो गई। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, लॉटरी किन लोगों की लगती है, मतलब कौन से प्लैनेट में बिल्टअप होते हैं वो लोग, है ना, मतलब कहाँ होता है ये सब, मतलब हमारी तो नहीं लगती। जी हाँ, आपकी या मेरी भी नहीं लग रही। सो मैं भी यही सोच रही हूँ कि थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जो है जो लॉटरी जीत चुके हैं लोग उनसे लेने लेने चाहिए, क्योंकि लॉटरी लग जाए तो वाई हो जाए, मतलब छप्पड़ भाड़ के पैसा एक साथ मिले वो किसको बुरा लगेगा, राइट। सो कांग्रेचुलेशंस टू दिस लवली लेडी जिसने लिटरली जीत ली है $1 million से ज्यादा की लॉटरी, और हम यही कहेंगे कि अगली बार से अपनी टिकट को गलती से भी कचरे में मत फेंकना मैडम। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब बर्थडे विश करने का यहाँ पर वक्त हो गया है। जी हाँ, और ये बर्थडे विश हम करने वाले हैं बॉलीवुड के एक बहुत ही यूनिक एक्टर के को। ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ सुनील शेट्टी, अंजलि, अंजलि। जी हाँ, ऑफ कोर्स मुझे तो वो एक्टिंग करनी भी नहीं आती है एंड आई एम सो बैड एट एक्टिंग, बट यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दैट सुनील शेट्टी। नाउ सुनील शेट्टी जो है वो अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए और बड़ी ही यूनिक एक्टिंग के लिए हमेशा से फेमस रहे हैं, लेकिन एक चीज के लिए वो अब और भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं और वो है उनकी हॉटनेस। मतलब दैट पर्सन इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एंड सेक्सियर एंड सेक्सियर डे बाई डे एंड आई एम नॉट द वन सेइंग दैट। जी हाँ, मैं नहीं हूं जो ये बोल रही हूँ, पूरी दुनिया जो लोग इंडियन सिनेमा को देखते हैं वो कह रहे हैं कि सुनील शेट्टी क्या खा रहे हैं, मतलब व्हाट इज दिस यू नो एलिक्सर ऑफ यू नो इमोर्टैलिटी और व्हाट एवर इट इज, बट जो भी है वो सेक्सी और बहुत ज्यादा सेक्सी और बहुत ज्यादा हॉट होते जा रहे हैं। मतलब उनको देख के लगता ही नहीं है कि वो लिटरली ग्रैंड पेरेंट बन गए हैं, मतलब उनको देख के नहीं लग रहा। जी हाँ, तो सुनील शेट्टी इज गेटिंग हॉटर डे बाय डे, सो हम यही विश करेंगे उन्हें कि जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सुनील शेट्टी सर, और यही है हमारी दुआ कि आप ऐसे ही एज करो जस्ट लाइक अ फाइन वाइन, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एज कर ही नहीं रहे हो, मतलब एजिंग तो हो ही नहीं रही है, बट अगर हो भी रही है तो वो फाइन वाइन की तरह हो रही है जो कि हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। और ऐसे ही होता रहे, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, खुश रहिए और आगे अपने जो फैंस हैं उनको एंटरटेन करते रहिए अपनी झलक दिखाकर, क्योंकि जब भी आप बड़े पर्दे पर आते हैं आपके फैंस आपको देखने जरूर जाते हैं। सो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से एक बार फिर से, और यहां पर हमारी तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, जो कि अगेन बहुत ही फेमस गाना है और बहुत ही फेमस मूवी का गाना है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao, ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. Apne parivar layi lodindiyan sari zaruri cheezan naal kar chhad ke jaan wali kit banao. Ag de khatre de darjiyan di jaanch karo ate jangal di ag diyan chetavniyan nu suno. होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार.
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन. au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
7: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार श्रेनिविया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ अब रुख करते हैं खबरों का, यानी कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है, वही जानने का वक्त हो गया. सबसे पहले कोलंबिया से शुरुआत करते हैं, जहां पर भूकंप आया है और उसकी तीव्रता 7.4 थी. जी हाँ, तो कोलंबिया में आए भीषण भूकंप में भारी तबाही मचाई है. जी हाँ, 7.4 तीव्रता के इस भूकंप में कम से कम 132 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. हालात को देखते हुए देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है. अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बताई है. जी हाँ, कोलंबिया की भूवैज्ञानिक सेवा के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:34 पर आया. भूकंप का केंद्र चोको प्रांत में जमीन से करीब 103 किलोमीटर की गहराई में था. इसके झटके पश्चिम कोलंबिया के सैकड़ों किलोमीटर तक फैले बड़े इलाके में महसूस किए गए. भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में काफी उत्पादन के लिए मशहूर पेरेरा शहर और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल है। वैले डेल काउका क्षेत्र में भी भूकंप से भारी नुकसान की खबर है। भूकंप के केंद्र से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित पेरेरा शहर में भारी तबाही हुई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक पेरेरा शहर और आसपास के इलाकों में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है और 65 इमारतें ढह गई हैं। इनमें से 15 इमारतों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। शहर के कुछ हिस्सों में स्थानीय समय अनुसार मंगलवार सुबह 5 बजे का कर्फ्यू लगाया गया है। पेरेरा से करीब 160 किलोमीटर दक्षिण में स्थित काली शहर में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक यहां 32 इमारतें ढह गई हैं। काली भूकंप के केंद्र से करीब 200 किलोमीटर दूर है। बचाव और राहत अभियान जारी है और प्रशासन ढही हुई इमारतों में फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान चला रहा है। अधिकारियों को आशंका है कि मलबे में और लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसे में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है।

जी दोस्तों, वहीं गल्फ में एक और ट्रीटी साइन हुई है और नॉट एग्जैक्टली गल्फ कंट्रीज के बीच में, क्योंकि एक कंट्री यूरोप में आती है और दूसरी कंट्री एशिया में आती है और वो भी इस तरफ, जी हाँ, और तीसरी कंट्री ऑफ कोर्स गल्फ में आती है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टर्की। जी हाँ, अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इन तीनों कंट्रीज के बारे में मैं बात क्यों कर रही हूँ। वेल, वो इसलिए क्योंकि इन तीनों कंट्रीज ने एक पैक्ट साइन किया है कि अगर इनमें से किसी पे भी हमला होगा तो दूसरी भी लड़ने के लिए जाएगी उस सामने वाली कंट्री से जिन्होंने हमला किया होगा। मतलब एक कंट्री पे हमला तीनों पर माना जाएगा और सब लड़ने के लिए जाएंगे। नाउ द थिंग इज कि ये वाली ट्रीटी जो है, जो साइन हुई है, उसके बाद सऊदी अरब और टर्की के साथ तो पाकिस्तान की जो है वो दोस्ती हो गई है, लेकिन दूरी यहां पर बन सकती है ईरान के साथ। जी हाँ, अब आपको पता है या नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि हूती विद्रोही जो है वो सऊदी अरेबिया के पीछे लगे हुए हैं। मतलब सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले हुए हैं, उनके पीछे जो है वो लगे हुए हैं। और ये हमें हमेशा से पता है कि ईरान और सऊदी अरब की ज्यादा बनती नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक समुदाय शिया है और दूसरा है सुन्नी, और इस वजह से हमेशा जो है वो दोनों में ज्यादा दोस्ती कभी भी नहीं रही। लेकिन अब जो है वो विवाद बढ़ रहा है। जी हाँ, ये विवाद जो है वो इजराइल अमेरिका के साथ साथ अब सऊदी अरब के गलियारे तक पहुंच गए हैं और इसीलिए इस पैक्ट को साइन किया गया है। नाउ आई वंडर कि सऊदी अरब पर जो हमले हो रहे हैं, फिर चाहे वो हूती विद्रोही कर रहे हैं या ईरान बैक्ड और ग्रुप कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान जाएगा लड़ने के लिए? जी हाँ, क्या ऑफकोर्स ईरान के खिलाफ, लेकिन ऐसे में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसी पर बात हुई है पाकिस्तान और ईरान के मंत्रियों के बीच में। आइए जरा बताते हैं इसमें क्या हुआ। जी हाँ, सो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात की। इस दौरान इसाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल ही में हुए मक्का रक्षा समझौते के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी ईरानी विदेश मंत्री को दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक बातचीत के दौरान इसाक डार ने मक्का समझौते के उद्देश्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि समझौते का उद्देश्य रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में भूमिका निभाना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब्बास अराकची ने समझौते के प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराने के लिए इसाक डार का आभार जताया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर लगातार संपर्क में रहने पर सहमति जताई। गौरतलब है कि दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, मतलब कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। जी हाँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को क्या समझ आ रहा है वो तो वक्त ही बताएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात करते हैं मिस्टर ट्रंप की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से किस बात के लिए मांगा मुआवजा। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हालिया सैन्य संघर्ष को लेकर मुआवजे की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है तो अमेरिका भी ईरान से उन लोगों के लिए मुआवजा मांग सकता है जो ईरान के हमलों में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं देख रहा हूं कि ईरान के प्रतिनिधि पिछले 5 महीने के सैन्य संघर्ष के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये संघर्ष इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वे परमाणु हथियार नहीं छोड़ रहे थे, जबकि हमारी किसी भी बातचीत या बैठक में इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। जी हाँ, उन्होंने लिखा, लेकिन ये एक दिलचस्प विचार है और मैं भी ईरान से मुआवजे की मांग कर रहा हूँ। ये मुआवजा उन सभी लोगों के लिए होगा जिन्हें उन्होंने मार दिया है या गंभीर रूप से घायल किया है। इन हमलों और संघर्षों के लिए ईरान जाना जाता है, जिनका नेतृत्व शुरुआत में जनरल सुलेमानी ने किया था। इसमें USS कोल पर मारे गए लोगों के परिवार और लड़ाई में मारे गए हजारों अन्य लोग भी शामिल हैं। ट्रंप ने लिखा कि इसके अलावा पिछले 50 वर्षों में ईरान ने जिन लाखों निर्दोष प्रदर्शनकारियों को मारा है उनके परिवारों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इनमें पिछले 5 महीने में मारे गए 52,000 लोग भी शामिल हैं। मैंने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत में इस मांग को मजबूती से रखें। गौरतलब है कि ईरान के प्रतिनिधि बातचीत में लगातार ये मुद्दा उठाते रहे कि उनके देश को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं एक ही चीज के लिए प्रे करना चाहूंगी, और मैं ही नहीं बल्कि मैं आप चाहूंगी कि आप सब भी प्रे करें कि जो ये वाइल्ड फायर्स है जिन्होंने यूरोप को बुरे हाल से परेशान करके रखा हुआ है, इनफैक्ट अभी भी अब वो कनाडा को परेशान कर रही है। जी हाँ, ब्रिटिश कोलंबिया, अगर आपने कभी ब्रिटिश कोलंबिया को देखा है, कभी आप गए हो या उसकी तस्वीरें आपने देखी है, तो आप यही कहोगे कि कितनी खूबसूरत जगह है। वहां पर आग जो है वो फैली हुई है और कनाडा भी अब वाइल्ड फायर्स से बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ है। जी हाँ, सो मैं यही कहूंगी कि ये नेचर जो है वो हमें पनिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है वो बहुत सारी गड़बड़ चीजें करते हैं, बट ये चीज जो है बस अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इन वाइल्ड फायर्स की वजह से इतने सारे पेड़, इतनी सारी जो ये वेजिटेशन होती है ये खत्म हो जाती है, खाना खत्म हो जाता है, और इंसानों के साथ साथ जो बेजुबान जानवर है जो उन जंगलों में रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी हाँ, उनमें से कितने ही जानवर जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वाइल्ड फायर्स। तो ब्रिटिश कोलंबिया में आग जो है, वाइल्ड फायर्स जो है वो परेशान किए हुए हैं, फ्रांस के साथ साथ, स्पेन के साथ साथ, इटली के साथ साथ, ग्रीस के साथ साथ, बहुत सारी और जगहों के साथ साथ, अब यहां कनाडा भी इससे परेशान हुआ है।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा ट्रंप के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा हम ट्रंप के बारे में बात कर चुके हैं। वेल मजेदार और फनी बात के बारे में बात कर रही हूं। मतलब ट्रंप रोस्टिंग सेशन जो है वो शुरू हो रहा है और इसी में मैं आपको लेकर जा रही हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रंप को बहुत ही ज्यादा पसंद है मतलब खिताब हासिल करना, मतलब उनको पीस प्राइजेस चाहिए, मतलब वो पीस प्राइस के पीछे कितनी हद तक पड़े थे, किस हद तक पड़े थे, उसके बारे में मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, राइट? मतलब वो क्रेजी हो गए थे उसके लिए, इतने क्रेजी हो गए कि जिसको मिला उसी से ले लिया। जी हाँ, मतलब वेनेजुएलन जो है ऑपोजिशन लीडर को वो प्राइज मिला तो उन्होंने उसी को राजी कर लिया कि तुम ऐसा करो, तुम मुझे दे दो और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं पीछे से पर्दे के पीछे कुर्सी। जी हाँ, जी हाँ, So, ऐसा हुआ भी। एंड यहां पर अब हम आपको बताने वाले कि कैसे वो एक और खिताब की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, और ये खिताब जो है वो उनको इंटेंशनली नहीं चाहिए, मतलब ये वो चाहते नहीं है, लेकिन उनको मिलने वाला है, एंड दैट इज द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब उनको मिल सकता है क्योंकि उन्होंने 106 बार ये अनाउंस किया है कि वो ईरान को हरा चुके हैं वॉर में। जी हाँ, और आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा तुम्हें कैसे पता चला ये? वेल जो इंटरनेट पर बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं उन्हीं ने ये जो है वो स्टेटिस्टिक्स बनाए हैं, उन्होंने जो ये डाटाबेस बनाया है कि कैसे ईरान को मैं हरा चुका हूं, ये 106 बार अभी तक बोल चुके हैं और अभी पता नहीं और कितनी बार बोलने वाले हैं। सो उस हिसाब से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको मिलने वाला है ये घोषित करने का कि मैं जीत गया हूं, यह आई एम द विनर, बट ही इज नॉट द विनर। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो इतनी बुरी तरह से हार गए कि अब तो वो कह रहे कि अरे ठीक है, न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अरे मुझे इस बस लड़ाई से बाहर निकालो, हमारा जो है वो स्टॉक पाइल जो है वो मिसाइल्स का खत्म हो गया, मतलब हम जो है लिटरली बेघर हो जाएंगे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ऑफकोर्स वेपन्स आई एम टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, सो ईरान वॉर जो उस बंदे ने खुद ही शुरू की, उसके बाद जो है अब वो कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, ईरान वॉर जो है वो जीत चुके हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलने वाला है और न्यूक्लियर डील जो है वो होने वाली है। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो पहले भी हो रहा था तो लड़ाई हुई ही क्यों? वेल, अगर ये बात हमें समझ आएगी तब तो हम आपको समझाएंगे, बट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर उनको मिलने वाला है ये बोलने के लिए कि मैं तो जीत गया हूं भाई, मुझे नहीं पता ईरान क्या बोल रहा है, दूसरी कंट्रीज क्या बोल रही है, मैं तो जीत गया हूं। अच्छा, वो चोर चोर मुसेरा भाई की कहावत तो आपने सुनी होगी, राइट? यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है ट्रुथ सोशल पर, जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो फीफा चेयरपर्सन है वो सबसे बेस्ट है, उन्होंने 4 बार बेस्ट फीफा ऑर्गेनाइज किया है और जो भी उनको हटाने की कोशिश करेगा वो गलती करेगा क्योंकि फीफा ने सबसे ज्यादा मुनाफा उन्हीं के टाइम पे कमाया हुआ है और फीफा के जो चेयरपर्सन है उनको चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो करेगा वो गलती करेगा। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि हाँ ये तो तुमने बताया था निविया शर्मा कि चोर चोर मुसेरा भाई, मतलब वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। अरे करीब हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा पैसा पसंद करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा ऐसी बात नहीं है, पैसा तो हम लोगों को भी पसंद है, जो ऐसा बात, अरे पैसा पसंद होना और पैसे के पीछे पूरी दुनिया को पगला देना एक अलग बात है। सो दोनों ही सेम है, तो चोर चोर मुसेरा भाई एंड बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक ही थाली के चट्टे पट्टे, इज द टर्म आई हैव इन्वेंटेड फॉर देम। अब आप लोग बोलोगे इन्वेंट नहीं करिए तुमने निविया शर्मा, पहले से ही मार्केट में है ये टर्म। जी हाँ, ठीक है मान लेती हूँ मैं, बट द थिंग इज की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जब भी बनेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी क्योंकि ये इंटेंशनली नहीं उन्होंने बनाया है। और जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले उनको कॉल करने वाले हैं कि सर आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा बार अनाउंस करने का कि मैं जीत गया हूं, पर आप जीते ही नहीं हो, बट जो भी है रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, तो हम आपके पास आ रहे हैं इसको सील्ड डील करने और इसको अच्छे से यू नो फोटो वोटो लेने। जी हाँ, तो आई वंडर तब ट्रंप का क्या एक्सप्रेशन होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये चीज यूनिवर्सल है, क्या आपकी मॉम भी यही कहती हैं? जी हाँ, आप पहले सुनिए फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी हाँ, तो कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी, स्क्रॉल कर रही थी और वहां पर एक मीम आता है बहुत ही प्यारा सा, एक काऊ जो है वो स्कार्फ पहनकर सोई होती है, शेड्स पहनकर यानी कि चश्मे पहनकर, और उस पर लिखा होता है मी टेलिंग माई मॉम दैट माई लेग हर्ट्स एंड शी रिप्लाइड। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मी टेलिंग माई मॉम दैट माई लेग हर्ट्स एंड she replied it's because of your phone, it's because of the phone। जी हाँ, and you know what, इसको पढ़ने के बाद मैं इतनी ज्यादा जोर से हंसी कि मैं literally almost गिर गई। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा जब भी तुम ज्यादा जोर से हंसती हो तुम गिरने क्यों वाली होती हो? Well I don't know but that's how it is। अगर मैं बेड पे बैठी हूँ तो मैं बेड से गिरने वाली होती हूँ, मैं चेयर पे बैठी हूँ तो मैं चेयर से गिरने वाली होती हूँ, एंड आई थिंक अगर हम हंसते हैं तो हमें ऐसे ही हंसना चाहिए कि हम गिरने वाले हो जाए। जी हाँ, आई थिंक दैट इज द राइट वे टू लव। सो बात तो सही है भाई, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, मुझे ऐसा लगता था सिर्फ मेरी मम्मी ही करती है, मतलब मेरे को कहीं भी पेन हो, सर में दर्द हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, टांग में दर्द हो, यहां दर्द हो, वहां दर्द हो, मेरी मम्मी एक ही चीज कहेगी कि ये फोन की वजह से हुआ है, ये मैंने फोन जो लिया है उसकी वजह से हुआ है, मैं फोन चलाती हूं उसकी वजह से, मुझे कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो फोन की वजह से हुई है। एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी मम्मी भी ऐसे ही बोलती है जब भी आप कहीं बोलते हो कि मुझे यहां दर्द हो रहा है, तो वो बोलती है यू नो व्हाट, इट्स बिकॉज ऑफ द फोन। या टेल मी अबाउट इट प्लीज। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Sat Sri Akal, madam, namaskar, dosto, main hoon toda Prathak Pandit. Ek baar phir सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
4: सैटरडे 15th अगस्त 6:30 PM।
2: मिलदे हैं जी ब्रिस्बेन विच
4: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।
5: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब फेवरेट सेगमेंट जो है वो शुरू होने वाला है और इतना ही कहना काफी होगा क्योंकि आप सब समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। वेल, ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो रहा है, मतलब पुराने गाने, पुराने किस्से, पुराने तराने, और इसी के तो चाहिए होते हैं हमें बहाने। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा फिर से किया तुमने ट्राई शायरी मारने का। मत करो, प्लीज मत करो। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो नहीं करती हूँ। सो ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू हो रहा है विद अ वेरी ब्यूटीफुल फरमाइश, और ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। गाना बहुत ही खास है और गाने से ज्यादा ये गजल है। जी हाँ, तुम्हें देखूं बस और तुझे देखते देखते शाम हो जाए, शाम कर दूं। ये खूबसूरत सा गाना जो है वो आपको बहुत ही प्यारा लगने वाला है, गजल जो है वो आपको बहुत खूबसूरत लगने वाली है, और इससे अच्छा क्या ही होगा कि एक मतलब खूबसूरत सी फरमाइश के साथ ये सेगमेंट शुरू होगा। सो अमला जी, थैंक यू सो मच हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइश करने के लिए, ये प्यारा सा गाना हमें भेजने के लिए, और हम ये प्ले कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों क्या गजल है, क्या खूबसूरत गजल है। अगेन थैंक यू सो मच अमला जी इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए। और मैं तो कहती हूँ कि वाइब जो है ना वो सेट हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोग किस एक्टर के बहुत ज्यादा फैन है, मतलब अगर आप लोग नाम लेंगे धर्म जी का, अगर आप नाम

बहुत ज्यादा अच्छी करी है। जी हाँ, क्या आप किसी ऐसे अंडररेटेड एक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करते हो जो कि आपके अकॉर्डिंग बहुत ही खास एक्टिंग करता था, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करते थे, लेकिन उनको उनका ड्यू क्रेडिट जो है वो नहीं मिला? मतलब होता तो बहुत अच्छे से उनको और भी ज्यादा क्रेडिट मिल सकता था, लेकिन वो उतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाए। जी हाँ, आई थिंक इस कैटेगरी में सबसे ऊंचा नाम और सबसे पहला नाम जो है वो गुरुदत्त का आता है। फॉर मी, गुरुदत्त वॉज सच अ ग्रेट एक्टर। मतलब मैं उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहूँ, एंड ही वॉज सच अ गिफ्टेड डायरेक्टर ऑल्सो। मतलब ऐसी डायरेक्शन जो कि लिटरली बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी ना कर पाए। एक्टिंग में इतना सिक्का नहीं चला, ऑल्दो जैसे मैंने कहा कि एक्टर वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थे, बस उनको ड्यू क्रेडिट जो है वो नहीं मिला उनका। लेकिन अगर वो मिलता तो क्या उनकी जो करियर की जो दिशा थी वो डिफरेंट होती? अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैं कह रही हूँ गुरुदत्त जो है वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे, लेकिन बहुत अच्छे जबरदस्त डायरेक्टर भी थे, आपके हिसाब से वो कौन सा एक्टर रहा है उस एरा का जिसको उसके ड्यू क्रेडिट्स नहीं मिले? और अगर मिले होते तो शायद वो कुछ और होते, जरूर बताइएगा। यहां पर अब जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो भी है एक फरमाइशी गीत। गाने का नाम है अगर मुझसे मोहब्बत है। जी हाँ, आपकी परछाई जो है और उसका ये गाना है, और ये खूबसूरत सा जो गाना है इसे फरमाइश किया गया है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से, और विशाल जी ने ये गाना बहुत ही प्यार से हमें भेजा है। सो थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए और हमेशा थीम के अकॉर्डिंग जाने के लिए। मतलब आप हमेशा ध्यान रखते हो कि थीम कौन सी चल रही है उस हिसाब से मैं गाने भेजूँ, एंड दैट इज सो सो सो सो सो स्पेशल। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, अगर मुझसे मोहब्बत है, जी हाँ मोहब्बत की बात अभी कल ही मैं कर रही थी, धर्मेंद्र जी यानी कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड, और उन्हीं की मूवी का ये गाना है, मूवी है आपकी परछाइयाँ। जी हाँ, और ये खूबसूरत सी मूवी का ये खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना। 1964 में ये मूवी आई है, जी हाँ 1964, इमेजिन कीजिए कितना पुराना वक्त रहा है। जी हाँ, और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड जो है ना, वो तो जिससे मोहब्बत करते थे उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन ही मैन ऑफ बॉलीवुड से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। जी हाँ, मतलब फैन फॉलोइंग जो है, जो फीमेल फैन फॉलोइंग है धर्मेंद्र जी, उसको आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। मतलब आई नो सो मेनी वुमेन, खासकर फीमेल फैन फॉलोइंग, जो कि लिटरली मतलब अडोर करती हैं धर्मेंद्र जी को। और ये सिर्फ मतलब नॉर्मल लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल लोगों से हटकर हर एक दूसरी जो अभिनेत्री थी उन्होंने यही कहा है कि कैसे धर्म जी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो है वो एक्टर रहे हैं। जी हाँ, इस चीज से तो अनछुई मीना कुमारी भी नहीं रही। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि देर वॉज अ टाइम जब मीना कुमारी लिटरली इतनी ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो गई थी धर्मेंद्र से कि उनके रिश्ते की बातें जो है वो वहां पर उड़ने लगी थी। वेल ऑफकोर्स वहां पर धर्मेंद्र ने अपने आप को उससे दूर करना सही समझा और वो चीज मटेरियलाइज नहीं हुई, आगे ऐसा कुछ हमें सुनने को नहीं मिला। बट देर वॉज अ टाइम जब मीना कुमारी को लगा था कि क्या खूबसूरत इंसान है, और सिर्फ मीना कुमारी क्यों, वहीदा रहमान जी से जब पूछा गया कि कौन आपके हिसाब से सबसे हैंडसम एक्टर था, तो उन्होंने भी धर्मेंद्र का नाम लिया। मौसमी चटर्जी से पूछा गया तो मौसमी चटर्जी ने भी उनका नाम लिया। वेल ऑफकोर्स उन्होंने विनोद खन्ना का भी नाम लिया, लेकिन धर्मेंद्र की फैन फॉलोइंग हल्के में कोई भी नहीं ले सकता। और ये सब छोड़िए, अमिताभ बच्चन तक ने ये कहा है जब उनसे पूछा गया कि आप मुझे ये बताइए, उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि अमित सर आप ये बताइए कि जब भी जया बच्चन जी यानी कि जया मैम जाती थी किसी उस एक्टर के साथ काम करने, वो कौन सा एक्टर था जिसके साथ वो काम करने जाती थी और आपको टेंशन हो जाती थी, टेंशन यू नो इन व्हाट वे। जी हाँ, तो सामने से अमित जी बिल्कुल पॉज लिए बिना कहते हैं कि धर्मेंद्र जी, जी हाँ धर्मेंद्र जी, और ऐसा नहीं कि मुझे टेंशन होती थी, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि मुझे धर्मेंद्र बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे टेंशन होनी बंद होगी कि अब मैं क्या ही कर लूंगा, धर्मेंद्र पसंद है मेरी बीवी को, एंड दैट इज द ट्रूथ। जी हाँ, तो जब भी वो धर्मेंद्र के साथ काम करने जाती थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान तो उन्हें लगता है कि क्या खूबसूरत इंसान, मतलब है ना, मतलब वो उनसे बहुत ज्यादा जो है वो जुड़ा हुआ फील करते हैं। जी हाँ, एंड आप इमेजिन कीजिए कि एक हस्बैंड यानी कि अमित जी खुद ऐसा कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, मुझे इसका बहुत सोच के आंसर देने की जरूरत भी नहीं है, धर्मेंद्र वॉज द पर्सन जिसके साथ काम करने के लिए मेरी बीवी हमेशा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती थी और मुझे टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सीधा सीधा बता दिया था कि मुझे धर्मेंद्र पसंद है, एंड दैट इज द ट्रूथ, मेक पीस विद इट। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, और ये खूबसूरत सा गाना कौन सा है कि आप गेस कर पाएंगे? जी हाँ, कीजिए। वेल अगेन, ये गाना जो है वो धर्मेंद्र का ही है और उस गाने का नाम है बहारों ने मेरा चमन। जी हाँ, सुनते हैं इसको, फिर करते हैं बात।

जी हाँ दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम्हारे गाने जो है वो थोड़े खतरनाक से क्यों है। पहले आपको बताया हर दिन की एक वाइब होती है और आज की वाइब भी यही थी, मतलब थोड़ी सी तानेबाजी, थोड़ा सा सरकाज्म, थोड़ी सी सैडनेस। लेकिन सैडनेस की अपनी एक ब्यूटी होती है जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि हमारी ये वाइब कल भी रहेगी, क्योंकि कल की वाइब डिफरेंट होगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है इवनिंग वाइब जो कि होगी हर दिन डिफरेंट। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, और ये भी मैंने सबसे पहली बार तभी सुना था जब ये मेरी बहुत ही खास लिसनर है, उन्होंने फरमाइश किया था, मतलब मेरे लिसनर्स की फरमाइश है, हमारी प्लेलिस्ट बन जाती है, एंड दैट इज सो वंडरफुल। गाने का नाम है हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। इसी के साथ मिलेंगे अब आपसे कल, बाय, सी यू, टाटा।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: तुम जीत गए, हम जीत गए।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में PNG इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2026 की शुरुआत। ब्रिस्बेन कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 2 दिवसीय पापुआ न्यू गिनी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इसमें प्रशांत महासागर क्षेत्र के 300 से अधिक कड़े कारोबारी और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं क्वींसलैंड सरकार का क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट्स पर बड़ा निवेश। क्वींसलैंड सरकार ने क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और निर्यात को मजबूत करने के लिए $30 मिलियन के फंड का ऐलान किया है। इससे मेरेलियन बंदरगाह के जरिए एशिया को खनिज एक्सपोर्ट किए जाएंगे। वहीं लोगन और ब्रिस्बेन में हुई चोरी की घटनाओं पर पुलिस की कार्रवाई। जी हां, लोगन और आसपास के इलाकों में रात में हुई लगातार चोरी और गाड़ियां चुराने की घटनाओं पर ब्रिस्बेन पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और जनता से जानकारी साझा करने की अपील की है। वहीं लोगन प्रॉपर्टी में हुई घटना पर पुलिस का सख्त एक्शन। जी हां, ब्रिस्बेन के पास लोगन इलाके में एक घर में पार्टी के दौरान हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने 8 युवाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामलों की आगे जांच कर रही है। इसी के साथ पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नई 6 वर्षीय योजना लागू। क्वींसलैंड सरकार ने राज्य में रहने वाले 1,63,000 से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल, सेहत और रोजगार में सुधार के लिए अपनी पहली विशेष 6 वर्षीय लॉन्च की है, यानी कि वेटर्न्स स्ट्रेटेजी। वहीं ब्रिस्बेन मौसम अपडेट, हल्की सर्दी और तटीय इलाकों में बौछारें। जी हां, मौसम की बात करें तो ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड के तटीय इलाकों में हल्की ठंडक के साथ पॉजिंग शावर्स जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन का तापमान सुहाना रहा और वहीं रातों में हल्की ठंडी हवाएं आज भी आपको चलती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं, संसद में वित्त मंत्री का बड़ा बयान। आम जनता के लिए राहत की खबर, सरकार ने साफ कर दिया है कि आम ग्राहकों के लिए UPI का इस्तेमाल पहले की तरह बिल्कुल फ्री होगा। संसद में टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे व्यापारियों और आम लोगों पर कोई नया टैक्स का बोझ नहीं डाला जा रहा है। वहीं ई वीजा के लिए खुले 22 नए एंट्री प्वाइंट, अटारी बॉर्डर भी शामिल। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए अब सफर और आसान होगा। सरकार ने ई वीजा धारकों के लिए देश भर में 22 नए एंट्री प्वाइंट्स की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी लैंड पोर्ट और 11 इंटरनेशनल सी पोर्ट्स शामिल किए गए हैं। वहीं कावड़ यात्रा के चलते नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में स्कूल बंद। जी हां, वहीं झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन, राज्यव्यापी बंद का असर। जी हां, वहीं झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का प्रदर्शन तेज हो गया है। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज राज्यव्यापी बंद बुलाया गया है। वहीं देश में गोल्ड लोन की भारी मांग, NBFCs के आंकड़े आए सामने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए आंकड़ों के मुताबिक देश में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले चीन में चक्रवाती तूफान डॉल्फिन का कहर, 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। चीन के शंघाई और पूर्वी इलाकों में ताकतवर समुद्री तूफान डॉल्फिन टकरा चुका है। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। वहीं हॉर्मुज की खाड़ी पर तनाव जारी, ईरान ने रखी शर्तें। पश्चिम एशिया में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने कहा है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को दिए सख्त निर्देश। पेंटागन ने अपनी सभी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों को 21 दिन के भीतर मिसाइलें और सैन्य उपकरण तेजी से तैयार करने का प्लान सौंपने को कहा है। वहीं नागासाकी में 81वें परमाणु हमले की बरसी पर शांति का संदेश। जी हां, जापान के नागासाकी शहर में आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए परमाणु हमले 81वीं बरसी मनाई गई और इस मौके पर जापानी पीएम ने दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। वहीं रूस ने भारत तक नया रेलवे रूट बनाने का दिया प्रस्ताव। रूस ने भारत महासागर और भारत तक एक नया रेल नेटवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। रूस का कहना है कि इस रेलवे लाइन के बनने से समंदरी रास्तों पर निर्भरता कम होगी और व्यापार अधिक सुरक्षित हो सकेगा। इसी के साथ फिलीपींस में चक्रवात और बारिश से 3.8 लाख लोग प्रभावित। फिलीपींस में मानसूनी बारिश और भीषण तूफानों में भारी तबाही मचाई है। लगभग 3,80,000 से अधिक लोग बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में हुआ बड़ा बदलाव, क्वार्टर फाइनल खत्म। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के फॉर्मेट में बड़ा फेरबदल किया है। इस बार परंपरागत क्वार्टर फाइनल राउंड को पूरी तरह हटा दिया गया है। इसी के साथ अमेरिका में भारत के युवाओं का ऐतिहासिक कारनामा, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के 19 वर्षीय बसंत कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है, वहीं शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं कॉमनवेल्थ फेंसिंग, भारत ने पहले ही दिन जीते 17 मेडल। नाइजीरिया में चल रही अंडर 23 कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन ही भारतीय खिलाड़ियों ने झंडे गाड़ दिए हैं। इसी के साथ वर्ल्ड यूथ ब्रिज चैंपियनशिप में भारत को मिला गोल्ड। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: डिजिसेल बेटर टुगेदर।
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें DigiCellPacific.com।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रणत भजत। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

0: कार साडे आए असी बुले न समाए साडे कार तशरीफ ले आया साडे सारे वलों जी
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
3: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
2: ऐसा क्या खास है वहाँ
3: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
2: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

ਸਸਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਲਖ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਿਸੋਨੀ 101.9 ਤੇ ਜਿਵੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 14 ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ICC ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ICC ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ICC ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ICC ने विश्व कप तो 18 महीने तो भी घट समा बाकी रहिंदे नवे फॉर्मेट का ऐलान किया। क्रिकेट स्कॉटलैंड अते रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन ने समय बारे इतराज प्रगट किया है, कहते हुए कि एसोसिएट मैंबरां नूं प्रभावित कर सकता है। दोवां बोर्डां ने एक सांझा बयान सांझा किया जिस विच कहा कि एक क्रिकेट के विश्वकरण विच योगदान नहीं पावेगा। ICC ने 2027 विश्व कप लई एक नवा फॉर्मेट बनाया है। टूर्नामेंट विच 14 टीमां हिस्सा लैणगियां पर इस तों पहलां 3 टीमां विचकार इक सुपर सीरीज खेडी जावेगी। इस तों बाद टूर्नामेंट नूं घटा के 12 टीमां कर दित्ता जावेगा जिन्हां नूं दो समूहां विच वंडिया जावेगा। हरेक समूह दीआं चोटी दीआं टीमां 3 टीमां अगले दौर सुपर 7 लई क्वालीफाई करनगियां। इस तों इलावा 7वीं टीम सब तों वधिया प्रदर्शन वाली हरेक समूह दे चौथे स्थान वाली टीम होवेगी। सुपर 7 एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट विच खेडिया जावेगा जिस विच हरेक टीम एक दूजे दे विरुद्ध एक मैच खेडेगी। उधर भारत वल करिए तो सोमवार शाम नूं चमोली जिले की नीति घाटी विच भारी बारिश तो बाद तमाक नाला अचानक ओवरफ्लो हो गया। ज्योतिरमठ मलारी मोटरवे दे तमाक नाले उत्ते बनिया घाटी का पुल तेज करंट नाल वह गया जिस नाल नीति घाटी विच वाहनों की आवाजाई विच विघन पै गया। जिला एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार 123 BRTF सुरैत थोटा द्वारा बनाया गया वैली पुल नाले विच भारी मीह दे वहा कारण नुकसान किया ते वह गया है। घटना विच एक BRO कांस्टेबल एक वाहन दे वह जाण दी खबर है। सूचना मिलने ते जिला प्रशासन स्थानक अधिकारियां दे नाल SDRF अते NDRF टीमां नूं घटना स्थान ते भेजिया। उधर पंजाब विच भ्रिष्टाचार के मामले विच गिरफ्तार पंजाब पुलिस के मुअत्तल DIG हरचरण सिंह भुल्लर उर्फ HS भुल्लर नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तो दूजी वार भी राहत नहीं मिली है। जस्टिस मनीष बत्रा ने उन्होंने रैगुलर जमानत अर्जी खारिज करदिया कहा है कि जांच दौरान सामने आए रिकॉर्ड की गलबात तस्दीक रिपोर्ट ट्रैप कार्रवाई पहली नजरे रिश्वत मंगण सह मुलजम राही रकम लैण का मामला बनता है। अदालत ने खास तौर पर कहा है कि महत्वपूर्ण गवाहां दी गवाही अजे हुण बाकी है ते पुलिस विभाग विच भुल्लर दे अहुदे नूं देखदिआं गवाहां नूं प्रभावित या धमकाउण दे खदशे नूं नजरअंदाज नहीं कीता जा सकता। जमानत दी मांग करदिआं भुल्लर वल्लों कहा गया सी कि ओह 3 दहाकिआं तों वध समय तक सेवा कर चुके हन ते सेवा मुक्ति दे नेड़े हन। जांच पूरी हो चुकी है इस लई उन्हां नूं अगे हिरासत विच रखण दी लोड़ नहीं है। बचाव पक्ष ने इह वी दलील दित्ती है कि उन्हां तों कोई रकम बरामद नहीं होई ते मुअत्तल होण कारण गवाहां नूं प्रभावित करन दी संभावना नहीं है। CBI ने जमानत का विरोध करदिआं रिकॉर्ड की गलबात वट्सएप रिकॉर्ड ते तस्दीक दौरान की गई कॉल का हवाला दिता। उधर मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर शकील नूरानी नूं गिरफ्तार किया है। उन्हां ते 33 साल की एक उभरती हुई अदाकार ने जबर जनाह ते धमकी देने का दोष लगाया। उन्होंने कहा कि 73 साल के मुलजम खिलाफ FIR दर्ज होने तो बाद लुक गए सन। उन्होंने शनिवार नूं महाबलेश्वर हिल स्टेशन ते उन्होंने फार्म हाउस तो फड़िया गया। उधर सोशल मीडिया ते कमल कौर भाभी दे नाम नाल जानी जांदी कंचन कुमारी दे कतल मामले विच पुलिस वल्लों मुख साजिशकर्ता दस्से जांदे अमृतपाल सिंह मैरो खिलाफ वी अदालती कार्रवाई अगे वध गई है। अदालत ने सोमवार नूं मुख मुलजम अमृतपाल सिंह मैरो ते रणजीत सिंह खिलाफ दोष तय कर दित्ते हन। अदालत ने दोवां खिलाफ भारतीय दंड संहिता दी धारा 103 तहत दोष तय कीते हन। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 नूं होवेगी। कतल तों बाद विदेश ਅੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਮੈਰੋ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ UAE ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ
भेज दिता गया है। पुलिस अनुसार कंचन कुमारी दा जून 2025 बठिंडा विच कतल कर दिता गया सी। उसकी लाश कार विचों मिली सी अते पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच गला कुटन दी गल सामने आई सी। इस मामले विच पुलिस ने अमृतपाल सिंह मैरो नूं मुख साजिशकर्ता दस्या जदकि उसके साथियों नूं पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया सी। उधर पंजाब विधानसभा ने सिक्ख्या बुनियादी ढांचा कार रोजगार पेंड विकास और वातावरण सुरक्षा समेत वख-वख खेत्रा नाल संबंधित नौ अहम बिल पास किए हैं जिस नाल सूबे विच विधानक रेगुलेटरी ढांचे नूं होर मजबूत करन दा राह पत्रा हो गया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा वालों पेश किया गया पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सोध बिल 2026 बहुमत नाल पास हो गया है। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस वालों पेश किया गया द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ ऑन एडिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोध बिल 2026 सर्वसम्मति नाल पास हो गया। सदन विच यूनिवर्सिटियां नाल संबंधित तीन बिल भी पास किए गए ने। इन्हां बिलों विच क्लाउड यूनिवर्सिटी हुशियारपुर बिल 2026 एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी पटियाला बिल 2026 अते फिजिक्स वाला डिजिटल यूनिवर्सिटी पटियाला बिल 2026 शामिल सन जो कि सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस वालों पेश किए गए अते बहुमत नाल पास हो गए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों पेश किए गए पंजाब गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स सोध बिल 2026 बहुमत नाल पास हो गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों पेश किया गया पंजाब राज आउटसोर्स परसोनल बिल 2026 सर्वसम्मति नाल पास हो गया है। तो हम तक अहम खबर ही खबर की वधेरे जानकारी सुझाव देने के लिए जुड़ सकते हो संपर्क कर सकते हो तो सानू ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आई डी है bisoni@bisoni.com। इस ही फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो बिसोनी 107.1। फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबर लेकर। तकली दे इजाजत, सत श्री अकाल।

आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसे बने हुए जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश शलक दे नाल से बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तां तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिसोनी 101.1 एम साडा फेसबुक पेज है ते brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। खैर तुहानूं पता ही है, पर फिर भी मैं हर रोज दस ही देनी हुनी ताकि तुसी कदे भुल ना जाओ जरा भी। ते जुड़दे रहो साडे नाल, रखो अपनी फरमाइशा, करो साडे नाल दिल दीआं गल्लां, ते मैं तां गाणे तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी ना। जरूर जरूर जरूर सुणाउंगी। ते चलो फिर तुसी इन गीतां नूं इंजॉय करो, मैं हुणे वापस आई।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरी रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वन सन वन एम ते जी आज के संदेश अलग दिन आल तुसी बने हुए हो होप तुसी इन गीतों नु बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैगे हो ते इसे तरीके दे नाल सोने सोने गीत मैं आगे भी तुहानू सुणाउंदी रहूंगी नाले करदी रहूंगी गल्लां तां हुण गल्लां करिए ना जे आपां तां बॉलीवुड दे विच बहुत कुछ खास हुंदा हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड तां मैनूं इंटरस्ट बॉलीवुड दे विच है क्योंकि बॉलीवुड दी फिल्मां इन्नियां सोहणियां आ रहीयां हैगियां ना तां सोचा के तुहानू भी दस्सां देखो पिछे चलदे हैगे आ 70s 80s 90s राजेश खन्ना तो लैके कुड़िया की दीवानगी किसी तो छुपी नहीं हैगी जिस रास्ते चो लंघते सीगे ना उतो की धूल नाल कुड़िया अपनी मांग भर लैंदियां सी राजेश खन्ना तो बाद धर्मिंदर अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा ऋषि कपूर मिथुन चक्रवर्ती नू भी दर्शकों ने खूब प्यार दिता पूरे तीन दहाकियां तक इन्हां सितारियां दा बॉलीवुड इंडस्ट्री विच जलवा रहा इस विचों सिर्फ दो स्टार्स दे बेटे बेटियां नूं ना इंडस्ट्री विच सफलता मिली है ते ओ सुपरस्टार ते उन्हां दे बेटे कौन ने उन्हां बारे दसूंगी तुहानूं पर पहला सुणाउनी है गीत

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

जी अनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो तो सब तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। तो देखो राजेश खन्ना का असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड के विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया सीगा। तो राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक 17 तो ज्यादा हिट फिल्मां दित्तियां सी। उन्होंने कटी पतंग इतफाक डोली बंधन दो रास्ते खामोशी ते द ट्रेन सच्चा झूठा सफर आनंद आन मिलो सजना अंदाज मर्यादा हाथी मेरे साथी महबूब ते छोटी भाभी वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां सीगियां। 1974 तो उन्हां दा डाउनफॉल शुरू होया सी। फिर उन्होंने 1980 के दहाके विच वापसी की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया नाल 1973 विच ब्याह किया सी। ब्याह तो बाद उन्होंने दो बेटियां ट्विंकल खन्ना ते रिंकी खन्ना होईयां सी। इन्हां बारे दसना है थोनू, इन्हीं यह दसना जरूरी हुंदा ना, छोटियां छोटियां चीजां दसनियां बहुत ज्यादा जरूरी हुंदियां। बेटियां बारे दस दी पर पी लैंगी सुन लो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
4: I, so don't say I, so don't say I.

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वनसा वारे जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो राजेश खन्ना दिया दोनों ही बेटिया ने बॉलीवुड विच किस्मत अजमाई, दोनों नू निराशा भी हथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड विच डेब्यू किया। डेब्यू फिल्म तो सुपरहिट रही पर इस तो बाद आने वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना इतिहास इंटरनेशनल खिलाड़ी जुल्मी बादशाह मीला वर्गिया फिल्मों में काम किया। ट्विंकल की भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड विच कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी मुझे कुछ कहना है वर्गिया फिल्मों में काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना तो फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह किया तो उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangalan vich agg lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di agg to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल मदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रथम भजन। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milte hain ji, Brisbane vich.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Gravatt. Tickets at Premier Tickets.
1: Queensland vich har saal jangalan vich agg lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di agg to bachav di yojana banao, ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिरसानी 101.9 FM जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो हुण गल करदे हां कि 70 ते 80 यानी कि 70s 80s दहाके दे सब तो वड्डे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन दी महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने 2000 रिफ्यूजी फिल्म नाल करीना कपूर के नाल बॉलीवुड विच डेब्यू किया। जेबी दत्ता के निर्देशन विच बनी यह फिल्म कुछ खास नहीं कमाल कर सकी। अभिषेक बच्चन के करियर की शुरुआत दी 14 फिल्मा फ्लॉप या डिजास्टर रही। उधर 2004 धूम फिल्म तो उन्होंने सफलता का स्वाद चक्या है। फिर बंटी और बबली, धूम 2, गुरु हिट रही, धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल 3 वर्गे मल्टी स्टारर फिल्मा विच उन्हां दा काम सराया गया, पर वह सोलो हिट देण विच फेल रहे। अभिषेक बच्चन भी अपने पिता वर्गे स्टार नहीं दोहरा पाए, पर अज भी स्ट्रगल कर रहे ने।
1: क्योंकि मेरी जिंदगी में यह चीजें सीखी हैं।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जितेंद्र जितेंद्र बेटे ने तुषार कपूर उन्होंने गल करते हैं। तुषार कपूर ने बॉलीवुड मुझे कुछ कहना है डेब्यू किया। पहली फिल्म तो सफल रही पर फिर किस्मत ने साथ नहीं दिता। तुषार कपूर की एक्टिंग भी दर्शकों नूं लुभा नहीं सकी। क्या दिल ने कहा जीना सिर्फ मेरे लिए कुछ तो है ते ये दिल गायब खाकी क्या कूल है हम गोलमाल लव स्टोरी क्या लव स्टोरी है शूट आउट एट लोखंडवाला बहुत सारिया फिल्मा कीतियां पर कोई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। मल्टी स्टारर दे विच उन्हां नूं सराया गया पर उही गल ना अपने दम ते ओ वी सोलो हिट नहीं दे पाए ते जल्द ही ओ साइड हीरो बन के रह गए।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहाइश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: मैनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: यस वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आरजे संदेश चालक दे नाल तुसीं बने होए। देखो जितेंद्र दी एक तीवी हैगी है, बेटा नहीं कमाल कर सकिया, बेटी ने कीता हैगा एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर टीवी दी दुनिया दी क्वीन कहलाई जांदी है। उन्होंने तुषार कपूर तो ज्यादा उन्होंने सफलता मिली है। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी दे बैनर तले एक तो वध के एक सीरियल प्रोड्यूस कीते। एकता कपूर ने हम पांच, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, कुसुम कहीं तो होगा, कसम से पवित्र रिश्ता बड़े अच्छे लगते हैं, ते जोधा अकबर वर्गे कई सीरियल्स बनाए। तुषार कपूर ते एकता कपूर ने ब्याह नहीं किया। तुषार कपूर जो 2016 सैरोगेसी ते आईवीएफ के जरिए एक बेटे के पिता बने, सिंगल फादर बने। तुषार ने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है। तुषार कपूर की भैन एकता कपूर ने भी 27 जनवरी 2019 सैरोगेसी के जरिए बेटे रवि कपूर को जन्म दिया। सिंगल मदर बनी, उन्होंने अपने पिता जितेंद्र के असली नाम ते बेटे का नाम रखा।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

धर्मिंदर ही कलौते अजिहे स्टार है जिन्हां दे वड्डे बेटे सनी देओल दा करियर बेहद सफल रहा। सनी देओल ने 1983 दी बेता फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। फिर अर्जुन, घायल, दामिनी, घातक, बॉर्डर, गदर एक प्रेम कथा, गदर टू, बॉर्डर टू वर्गिया ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां। सनी देओल ने अपने दम ते सोलो हिट दित्तियां ने। उधर उन्होंने भरा बॉबी देओल ने करियर की शुरुआत 1995 विच बरसात फिल्म नाल कीती सी। मूवी सुपरहिट रही, फिर सोल्जर, गुप्त वर्गिया हिट फिल्मां दित्तियां, पर इस तों बाद उन्होंने नसीब उन्हां तों गुस्से हो गया। बॉबी ने फ्लॉप फिल्मां दी लाइन चुन ली। पूरे 15 साल फ्लॉप करियर का दौर चुनिया। 2019 विच उन्हां दी किस्मत पलटी ते ओ नेगेटिव रोल्स करन लग गए। एनिमल मूवी विच उन्हां दा छोटा जिहा रोल दर्शकां दे दिल नूं छूकिया।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਥਕ ਭਜਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ 2026 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ।
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
5: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
6: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
7: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
7: अरे, उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
7: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
7: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
8: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

देखो बेड़ा हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर एक हो सुपरस्टार की गल करनी रह गई सी, तो सोचा उन्हां दी गल भी जरूर कर ला ते उन्हां दी गल कर लैनी है जी। तो सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 विच आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू किया सी। उन्होंने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मां दित्तियां सी। अपनी छवि चॉकलेटी रही हैगी उन्हां दी। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने अपने पिता की विरासत नूं अगे संभाल लिया है। वह अपने पिता नाल तो दो कदम अगे निकल गए। रणबीर कपूर ने 2007 विच सावरिया मूवी दे नाल डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही पर उन्होंने संघर्ष किया, फिर बहुत सारिया फिल्मां कीतियां ते ब्लॉकबस्टर रही। रणबीर कपूर के टैलेंट ते कामयाबी ते पूरी इंडस्ट्री ने मान ली हैगी, असीं भी मान गए हैगे। तां इह कुछ सितारे हैगे ने उन्होंने बच्चे ने जिन्होंने की किया थानू दस्या है। बाकी तुसी की किया सारा दिन तुसी जरूर दस्या करो, साडे नाल जुड़ते रह करो। रेडियो बिरसोनी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, बिरसोनी @bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा अपना लो, साडे नाल पता जरूर करते रह करो। बाकी अपना ख्याल रख्या करो ते मैं तां इही कहना कि कल करांगे मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके ऐसी तोड़े को ला रहे हैं।
1: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
2: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
0: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन विच
2: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, and you are listening to Radio Biswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: मैं निकला

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

0: हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। पिछले वेदवाणी कार्यक्रम में हमने आपकी सेवा में गरुड़ पुराण पर आधारित एक इंटरव्यू प्रस्तुत किया था। प्रश्न पूछने वाली श्लोक थी और उनका उत्तर देने वाले हमारे बहुत ही माननीय प्रशांत मुकुंद प्रभु थे। हमने आपके लिए पहला भाग प्रस्तुत किया था, आज हम उसका दूसरा भाग प्रस्तुत करते हैं।
1: 1000 प्रकार के नरक गरुड़ पुराण में है, जिसमें से मुख्य रूप से हमारे 7 नरकों को मुख्य नरक बताया है। उनके नीचे फिर छोटे ऐसे हजारों नरक हैं। इवन जेल में भी आप जाएंगे ना, बैरक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट जेल होती है। पॉकेट मारने वाले की 3 महीने की जेल छोटी जेल होती है। कुछ जेल होती है जिसमें सुबह जेल में रहते हैं, शाम को छोड़ दिया जाता है। मर्डर वालों को हथकड़ियां डाल के, बेड़ियां डाल के और एक पर्सनल रूम के अंदर फिक्स किया जाता है मर्डरर्स को। तो डिफरेंट डिफरेंट जेल्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नरक हैं। तो इस नरक के अंदर क्या होता है, महापाप योनियों में जैसे किसी ने ब्रह्म हत्या करी है, ब्रह्म हत्या यानी किसी जीव की हत्या करी है, जैसे चींटी, मच्छर, तो नेक्स्ट लाइफ में उसको मॉस्किटो बनना है।
2: नॉन वेजिटेरियन खाने वाले
1: वो तो फिर जो खा रहे हैं वो तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ब्रह्म हत्या का। जब भी आप कोई भी एक कर्म करते हो, सामूहिक कर्म का फल मिलता है। सामूहिक यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट। जैसे अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, सो उसमें क्या, जैसे किसी ने नॉनवेज बनाया, जिस बुचर ने काटा, जिसने वो ब्लेड बनाया चाकू, उसे पता है ना मैं बुचर नाइफ बना रहा हूं, पर कह रहा है मैं तो नहीं खाता हूं पर बना तो रहे हो। इंटेंशन तो वही है ना, बुचर नाइफ बिके, पैसे आए, उसी से घर चल रहा है। बुचर नाइफ बनाने वाला, जिसने देखा होगा ऑटो में वो नेट के अंदर बंद करके जालियों में मुर्गियों को ले जा रहे हैं, जो ले जा रहा ऑटो वाला, जिसने नेट बनाया, मुर्गी जाली बनाई, जिसने बुचर नाइफ बनाया, जिस बुचर ने काटा, जिसने शॉप रेंट पर दी, जिसने शॉप में खरीदा, घर आके पकाया, पकाने के बाद खाया, जितने भी लोग इस एक
2: साइकिल में इन्वॉल्व है,
1: दे आर कॉल्ड एज सामूहिक कर्म, एक्युमुलेटिव इफेक्ट। अब प्रकृति क्या करेगी, सबको इकट्ठा एक ही एयरप्लेन में चढ़ा देगी, क्योंकि सबको अपने अपने कर्म से अलग अलग जगह बॉडी ली, सबने उनके कार्मिक रिएक्शंस उसी जीवात्मा के पेंडिंग चल रहे हैं, तो ला करके इकट्ठा एक ही परिवार में जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ दिया तो वो अब एक ही प्लेन या एक ही ट्रेन, एक ही ऑटो, एक ही कार में आ जाएंगे, 4 होंगे तो एक कार में, तो उनका जब वो कभी भी एक्सीडेंट होगा
2: सबके सब
1: खत्म होंगे, बिकॉज ऑफ उन्होंने एक मुर्गे का इसी प्रकार सामूहिक कर्म किया, सबको सामूहिक कर्म का फल मिलेगा।
2: तो प्रभु जी, आपको जो प्लेन क्रैश आपने बात बोला, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सामूहिक कर्म था?
1: बिल्कुल, इतने सारे लोगों को 300-400 लोगों को इकट्ठा एक जगह लाना, तो कोई जैसे आज रेप होती
2: है, इतना बड़ा हुआ है
1: रेप होता है, जैसे कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, गर्ल को ट्रैप करना, 5 लोगों का आना, किडनैपिंग करना, उसके बाद प्रूफ्स को घूम करना, चोरी करना, उन वकीलों का जो सहयोग करते हैं जितवाने में कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उन सबको कार्मिक अकाउंट पकड़ लेता है ना। स्वर्ण चोरी करने वाले जो सोना चुराते हैं, उनको पतंगा, कीट, कृमि, जब किसी को दफनाया जाता है तो कीड़े खाते हैं ना, उसको कृमि कहते हैं। तो ऑनेस्ट कितने लोग हैं वर्ल्ड में, तो कीड़े बन रहे कि नहीं बन रहे? और जो व्यक्ति मद्यपान करने वाला, अल्कोहल, जिस नरक में उसको तकलीफ दी जाएंगी, तो उस नरक का एक नाम दिया गया है, उसका नाम है तप्त लोह नरक। तप्त लोह मतलब लोहे को पिघलाएंगे, मोल्टन आयरन आपने देखा है कभी, कितना हीटिंग इफेक्ट, 1000 डिग्री प्लस होता है, उतना गर्म लोहा उस यातना शरीर के मुख में डाला जाएगा, जितने ड्रिंक के ग्लास उसने लिए होंगे लाइफ में। अब यातना शरीर में मर सकता नहीं, और पेन 100 times ज्यादा हो रहा है, चिल्ला रहा है, लीव मी, दे विल नॉट लीव यू, उसका नाम ही है तप्त लोह नरक। नॉनवेज बनाते थे, पकाते थे कढ़ाई के अंदर, साथ में होना चाहिए अल्कोहल के साथ में थोड़ा नॉनवेज पकौड़ा, तो वहां पर कुंभी पाकम नरक। कुंभी पाकम में कुंभी है, कढ़ाई है बड़ी, उसमें फ्राई करा, ऑयल हमेशा बर्न जलता उबलता रहता है, जो भी यातना शरीर में आया बोले इसका आज 4 घंटे पकाना है, इसको डाल दिया बॉडी। अब आदमी वहां पर यातना शरीर पड़ा, तलपते हुए जल तेल के अंदर, चिल्ला रहा है छोड़ दो, छोड़ेंगे नहीं, 4 घंटे का टाइम पीरियड है, 4 घंटे बाद निकाला जाएगा। तो मेंटल लेवल पर पेन होगा, क्योंकि बॉडी तो यातना शरीर है, छूट नहीं रही है ना, ब्लड निकल रहा है ना, कुछ हो रहा है, यातना मिल रही है मानसिक धरातल पर, और वो मन की गति पर कष्ट पाता रहेगा। उसके उपरांत जो मदपान पीने वाला था, जब उसका जन्म होगा, मनुष्य शरीर में आएगा, वो तो ट्रेनिंग पीरियड हुआ नरक में, तो असली कष्ट तो संसार में मिलेंगे।
2: अच्छा, तभी तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है,
1: ट्रेनिंग है,
2: लोहा
1: ये ट्रेनिंग है। जब ट्रेनिंग लेके नीचे आया तो गला पूरा छिला हुआ, किसी की आवाज होगी आपने देखा होगा कैसे खराब हो गई। वहां पर लोहा तप्त लोहा में गरम गरम लोहा खाया पिया है ना, तो सारा गला खर गया। आप बॉडी के अंदर आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं। विकृत दांत, टेढ़े मेढ़े दांत हो जाना। तो पूरा इसमें बताया गया है कि जो जो जैसा कर्म करेगा उसको क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना मंत्र के भोजन करता है, यानी भोजन से पहले प्रार्थना मंत्र नहीं बोलता, कौवा बनता है, क्रो। तो पहले उसकी ट्रेनिंग होगी कौवा बनने के लिए, चोंच ऐसी होगी, तुमको काया काया करना है, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही तो करेगा। तो ट्रेनिंग इज इन नरक लोका। अगर कोई घर का सामान चुराता है किसी के घर का, तो फिर वल्चर इन नेक्स्ट लाइफ, गिद्ध बनेगा। मधुमक्खी की शहद की चोरी करता है, बिना मधुमक्खियों को जलाते हैं, मारते हैं, चोरी करते हैं, एंड वी हैव दैट, बिना पैसे के हमने फ्री में ले लिया, हमारे घर के बाहर भी घूमते हैं, ले लीजिए जी शहद, ले लीजिए, तो अगले जन्म में मधुमक्खी बनेंगे। गाय की चोरी करते हैं अगर जो लोग, अगले जन्म में लिजर्ड बनते हैं, छिपकली। तो पहले ट्रेनिंग होगी इन सब की, फिर वो नीचे आएंगे पशु नहीं, ये मनुष्य आ रहा है वापस, और पूरी लिस्ट है अभी तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। जो व्यक्ति स्त्री के वस्त्र चुराता है, लेडीज के कपड़े चुरा लिए, उसको श्वेत कुष्ठ होगा। व्हाइट कलर का बॉडी में, जैसे कलर व्हाइट हो जाता है ना, पिगमेंटेशन, डीकलरेशन ऑफ द बॉडी हो गया, श्वेत कुष्ठ होगा उसको। गुरु का अपमान करेगा, जो व्यक्ति अपने अपने गुरु जी को अपमानित कर दिया, तो अगले जन्म में वो बौना होगा, डॉफ डॉफ बनेगा, छोटी हाइट का होगा। धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, उसको सुख नहीं दिया, संपत्ति नहीं दी, तो शब्द वेदी बहरा बनेगा, ही विल नॉट हैव ईयर्स, सुनने योग्य नहीं है। पर स्त्री गमन, दूसरी स्त्री का मैरिटल अफेयर किया, उसके साथ सेक्स किया, अनफॉर्चुनेट जीवन होगा। जिधर भी जाएगा, जो भी कर्म करेगा, इंटरव्यू देगा फेल हो जाएगा, टेस्ट देगा फेल हो जाएगा, मेहनत करेगा बीमार हो जाएगा, खाना खाएगा पेट दर्द होगा, हर जगह उसको अनफॉर्चून का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग विद द लेडी इन द लास्ट लाइफ। और नरक लोक में उसको तप्त लोह में एक तपती हुई बॉडी देंगे, मैलेंक्वीन, गरम गरम जलती हुई बॉडी, लेडी की बॉडी देंगे, और कहेंगे लो अब इंजॉय करो इसको। वो कहेगा मैं नहीं करना चाहता, तो जल रहा है मेरे को छूने में, करा भी करो तुम,
2: करना पड़ेगा,
1: करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे कर्म से पहले ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद दोबारा जन्म। रौरव नर्क, रूरू नर्क, अंदर तामिस्त्र, तामिस्त्र, कुंभी पाकम, लिस्ट है 1000 नर्कों की, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कर्मों के लिए, और सब एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। उसका अलग चल रहा ट्रीटमेंट, 4 घंटे होता नहीं, जैसे वैदिक सेंटर पे भी जाते हैं, ऑयलिंग हो रही है किसी की कहीं पर, किसी का मसाज हो रहा है, किसी का हो रहा है, अलग अलग केबिन्स बने हुए, सब जगह अलग अलग चल रहा है ट्रीटमेंट। शाम को रिपोर्टिंग देनी, हाँ इसका 4 घंटे का सेशन हो गया आज, ये
2: कितना टाइम चलता है
1: एज पर द कर्मस। एल्कोहल अगर एक बार पिया लाइफ में, तो एक बार का हुआ ना सेशन, 100 बार पे 100 बार जो पीता ही रहता था, बैठो जी परमानेंट बैठो। और वहां का टाइम पीरियड यहाँ के टाइम पीरियड से 1 साल का डिफरेंस।
2: अच्छा,
1: वी डू 1 ईयर हेयर, 1 डे देयर।
2: ओह माय गॉड। अच्छा, कैजुअल रिलेशनशिप्स, आजकल डेटिंग का बहुत कल्चर चल रहा है यूथ में, राइट, मल्टीपल पार्टनर्स, आजकल मैरिजेस में भी ओपन मैरिजेस चल रहे हैं, इसका बताइए।
1: दे विल बिकम डॉग्स इन देयर नेक्स्ट लाइफ।
2: व्हाई?
1: बिकॉज़ यू हैव सीन डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स, दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स,
2: टेंडेंसी वैसी हो जाएगी,
1: टेंडेंसी वैसी है। इसी प्रकार कष्ट मिलेगा नर्क में, एंड व्हेन दे कम बैक दे विल हैव टू बिकम अ डॉग्स बॉडी। दे थिंक दैट हैविंग रिलेशनशिप विद एनी फिजिकल पार्टनर इज वेरी कॉमन, इज नॉट सो। शास्त्र उसको अधिकार नहीं देते हैं। शास्त्र कहते हैं अगर आपको प्रेम है, आप प्रेम करें, उसके बाद विवाह करें, विवाह के बंधन में रह करके कॉम्प्रोमाइज नेचर के साथ में यू कैन एंजॉय द बॉडी, बट आपका प्रोक्रिएशन के लिए विवाह होना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, अगर धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो काम भी मैं ही हूं। सो हैविंग सेक्स विद योर वाइफ कम्स अंडर धर्म अविरुद्ध कामो अस्मि, धर्म के विरुद्ध जो सेक्स नहीं, पर ये तो धर्म विरुद्ध है ना, क्योंकि आपने पत्नी घोषित नहीं किया, आपने एंजॉय किया किसी बॉडी को, और उसके बाद आपने बोल दिया मैं जिम्मेदारी लेने योग्य नहीं हूं, और फिर वो अगर बच्चा हो भी गया तो ऑर्फन एज में दे दिया, अनाथ बना दिया किसी जीवात्मा को, और या फिर लेडी ने कहा मैं सिंगल मदर होकर के जी लूंगी, बट उसने भी तो पिता का हाथ हटवा दिया उसके सिर पर से, तो आदमी औरत बोले कि लेडी मैं तो चाहती थी कि मुझे वो पार्टनर है, लेकिन वो ही नहीं चाहता है, तो तुमने फिर उस क्रिया में गई क्यों? क्या कोई लेडी विदाउट अपनी एग्रीमेंट के इस क्रिया में जा सकती है? तो तुम्हारा भी लिटिल डिजायर तो था, चाहे तुम फोर्सफुली कुछ भी कह दो, चाहे वो पुरुष की गलती हो या स्त्री की गलती हो, संतान उत्पत्ति हुई है तो ये तुम दोनों की इच्छा से अनुरूप से हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूक्ष्म इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा थी एंजॉयमेंट की, लेकिन उसमें फिर यह आ गया। अब तुम्हें लगता अगर मैं जीव हत्या करती हूँ, अबॉर्शन करती हूँ तो मुझे पाप लगेगा, तो बेटर है कि मैं सिंगल मदर रहकर जीवन काट लूं, पर तुमने उसके पिता का सिर पे से हाथ हटा दिया, एक बच्चे के जन्म होते ही पिता चला गया, स्कूल जाओगे फादर नेम पूछेंगे क्या बोलेगा, तो वो पूरा लाइफ उसकी जो डेवलपमेंट होगा तो उसको हमेशा एक कमी लगेगी मेरा पिता नहीं था। तो एक लेडी ने अपने एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए एक पूरा जीवन किसी आत्मा का खराब कर दिया।
2: आपने अबॉर्शन की बात की, अबॉर्शन में क्या आउटकम होता है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि कैजुअल सेक्स के वजह से लोग की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है, तो क्या?
1: हाँ, तो जो भी धर्म के विरुद्ध कार्य है अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं तो इट इज लाइक अ मर्डर टू सम जीवात्मा। आप कहे मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, यू आर द बिगेस्ट मर्डरर ऑफ योर चाइल्ड। आपने एक जीवात्मा के जन्म लेने से पहले ही उसको आपने खत्म कर दिया। लोग बोलते हैं 3 महीने का मार सकते हैं, 20 डेज का मार सकते हैं, 30 डेज का मार, एक दिन भी हुआ जीवात्मा आई और शरीर बनना शुरू हुआ, द मोमेंट यू कम टू नो दैट आई एम अ प्रेग्नेंट लेडी, इट मींस ऑलरेडी देयर इज समथिंग इन योर बॉडी विच इज लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग नहीं है। लोगों में आजकल एक है 3 महीने बाद उसमें आत्मा आती है, दिल धड़कता है, ऐसा नहीं होता है। आत्मा आती है तो डेवलपमेंट शुरू होता है, अगर आत्मा नहीं है तो डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता है। टेबल कभी छोटी टेबल पैदा कर सकती है, लाइट कभी एक छोटा बल्ब पैदा कर सकती है, वहां जीव आया तब डेवलपमेंट शुरू हुआ, तब साइकिल रुका, पीरियड रुके, अब आपके बच्चा बनना शुरू हुआ, बच्चा बनना शुरू हुआ, आपने उसे मार दिया, दंड मिलेगा आपको।
2: पुण्य आत्मा की साइकिल पे आते हैं, अभी हमने नर्क की साइकिल समझ लिया, पुण्य क्या?
1: पुण्य आत्मा है, सो वन हु डू गुड कर्मास, यानी उसने अपने जीवन काल में बड़े अच्छे धार्मिक कार्य किए, मंदिर गया, लोगों से मिला, भंडारे किए, सब्जियां बांटी, पूड़ियां बांटी, पानी बांटे रोड पर खड़े होके, लेकिन इसको हम भक्ति नहीं कहते, इसको हम पुण्य कहते हैं। पुण्य और भक्ति में भेद होता है। पुण्य में आप भगवान से कहते हो दे दे, और भक्ति में कहते हो ले ले। भक्ति में आप भगवान को अपना संबंधी प्रियतम मानते हो, तो मीराबाई ने जैसे कहा कि मेरे तो पति हैं, पति रूप में संबंध बना सकते हो भगवान से, वात्सल्य रूप में यशोदा में जैसे प्रेम है कृष्ण के लिए, जिस प्रकार साक्ष्य रूप में अर्जुन ने भगवान से प्रेम किए, दास रूप में हनुमान जी ने राम से प्रेम किए, शांत रूप में शांत रस में, तो किसी भी रूप में आप भगवान संबंध जब बनाते हो, हनुमान ने आज तक कभी गुरु फोटो नहीं खिंचाया भगवान के साथ, हमेशा नीचे बैठे रहते। क्यों नीचे बैठेंगे? तो भगवान का वरद हस्त हाथ उनके सिर पे रहेगा, तो ये दास की स्थिति है। सो भक्त का प्रेम संबंध होता है, और एक पायस पुण्य आत्मा का धार्मिक होता है, मंदिर जाता है, झंडे भी लगाता है, तिलक भी लगाता है, बट उसके डिजायर होती है दे दे दे दे दे दे दे, जैसे पिता से पुत्र मांगता है, लेकिन जब प्रियतम बन जाते हो तो आप देते हो, क्योंकि वो लव कर रही है, प्रेम कर रही है। तो आप भगवान को प्रेम करोगे तो कुछ लेके जाओगे, आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा, पुष्पमाला पत्र कुछ लेके मंदिर जाऊंगा, तो ये कामना है। अब पुण्य आत्मा का हम साइकिल पढ़ रहे हैं। पुण्य आत्मा का शरीर छोटा, देवदूत जैसे दूत आएंगे, देवदूत जैसे सुंदर दिखने में होंगे,
2: अच्छा
1: ब्यूटीफुल बॉडीज, खींचेंगे नहीं, बोले आप बहुत इतना धर्म किया, इतने मंदिर निर्माण किए, आप अच्छे इंसान है, तो लोकल ट्रेन नहीं, आप एसी कंपार्टमेंट में जाएंगे, सो यू हैव ऑल द फैसिलिटीज। अच्छा बच्चे भी वैसे होंगे पुण्य आत्मा के परिवार में पुण्य करने वाले, जी देखिए हमारे पिताजी का पिंडदान प्रॉपर होना चाहिए, पंडित जी कुछ भी ले लीजिए, बस बेस्ट करिए, बेस्ट से बेस्ट पंडित जी बुलाइए। वो पंडित जी आकर के बढ़िया पिंडदान, 10 पिंड हो गए, आत्मा की यात्रा शुरू हो गई, बढ़िया प्रीति भोज हुआ, बढ़िया कीर्तन भजन हुए, फोटो पोस्टर्स लगे, शोक समारोह हुए, सब हुआ बढ़िया से हो गया। 13 दिन बाद आत्मा की यात्रा शुरू, 16 स्टेशन पर जब जाएंगे तो बढ़िया, वहां तो फैमिली पंडित जी को 56 भोग खिला रही है बढ़िया से, तो फूड का हिस्सा यम दूतों देवदूतों के पास मिलेगा, वो बोलेंगे देखिए आपके परिवार ने भोजन खा लीजिए, स्टेशन पर वो आत्मा आराम से भोजन खाएगी। चलने के लिए आपको इतने बढ़िया उन्होंने दान में सुंदर सुंदर जूते चप्पल परिवार में बांटे हैं, तो लीजिए आपके लिए चप्पल है, चप्पल पहना दी, तो ही इज मूविंग इन वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। हर स्टेशन पर कोई हंटर नहीं पड़ रहे, कुछ नहीं, बल्कि मालाएं पहनाई जा रही है कि देखिए एक पुण्य आत्मा जा रहा है, एक पुण्य आत्मा जा रहा है, चलता रहेगा। नाउ रीच टू दी वैतरणी नदी 11 महीने में, गाय खड़ी है, गौदान भी किया था, हाँ जी गौशाला बनाई थी हमने, अरे वाह वाह वाह, आप गाय की पीठ पर बैठ जाइए, पूछ नहीं पकड़नी है, पीठ पर बैठ जाइए, नीचे जो जल है वो सुगंध निकलेगी उसमें से, आप ब्लड नहीं है, सुगंध निकल रही है, सुगंध के साथ वहां पहुंचे तो यमराज भी उनको दिखाई दे रहे हैं, बड़े सॉफ्ट नेचर के। यमराज कह रहे ओ वेलकम, कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा जी ठीक है। तो इनका जरा पढ़िए, बोले अरे इन्होंने तो इतने मंदिर बनाए, इतने दान पुण्य के, इतने अच्छे इंसान थे, अच्छा अच्छा। तो इनको फिर कहाँ जाएंगे? बोले देवलोक जाए ना स्वर्ग। हाँ ठीक है ठीक है। तो स्वर्ग की अदर स्वर्ग लोक चले ऊपर, नरक वाला नीचे गया, स्वर्ग वाला ऊपर चला गया, क्योंकि ये जजमेंट दिया है ना भूलोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है और नरक साउथ डायरेक्शन में नीचे है, स्वर्ग लोक चला गया। स्वर्ग गया, आप स्वर्ग में जैसे गए तो एक माला पहनाई, वेलकम आप इतने पुण्य आत्मा है। देवता के जो लीडर है इंद्र, इंद्र ने बोला भाई इनकी पोस्टिंग कहाँ करी जाए? तो एज पर दी कर्मा अकाउंट, बहुत पुण्य आत्मा होंगे तो साइड पेरेफरी में रहेंगे, और अगर बहुत ज्यादा पुण्य किए हैं तो इंद्र की कैपिटल सिटी उसका नाम है अमरावती, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, स्वर्ग की कैपिटल का नाम है अमरावती। वहां पर लुफ्त है, सात कुंड है, सब कुछ अच्छे से उनको रखा जाएगा। सात कुंड है जैसे नहाने के लिए, और समुद्र है, एक पर्सनल एरोप्लेन है, फ्लाइंग प्लेन है, देवता लोग उड़ सकते हैं, कभी बुखार नहीं आएगा बॉडी में, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इनको, और हर प्रकार रोज अमृत का एक बूंद पिएंगे ताकि लंबी लॉन्गजीविटी रहे, इनकी लंबी आयु रहे। सभा में बैठेंगे, इंद्र की सभा में बैठेंगे, या जो भी उनको पोस्टिंग में जॉब दी गई है, तुम्हें पेड़ लगाने हैं, तुमको सफाई करनी है, या तुमको मैनेजमेंट देखना, जैस पर दी कर्मास उनको प्लेस किया जाएगा। लेकिन जो माला पहनाई गई थी पहले दिन, ये उतारी नहीं जाएगी, इसके पुष्प रोज सूखेंगे, प्रतिदिन सूखेंगे पुष्प, पुष्प सूखेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे, जिस दिन माला पूरी सूख गई तो फिर उनको किसी पुण्य घर के अंदर जन्म देंगे। तो इसको कहा गया क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, पुण्यों के क्षीण हो जाने पर, पुण्य खत्म हो जाने पर मृत्यु लोक में वापस भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। जो योगी थे, बड़े पायस आत्मी थे, बड़े पवित्र थे, धार्मिक थे, किसी पवित्र घर में, अंबानी से घर में जन्म हो गया, पैदा होते ही वर्कर ही वर्कर है घर के अंदर, जॉब की कोई टेंशन ही नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट का टेंशन ही नहीं, गाड़ियां लगी हुई हैं।
2: एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा उन लोग के साथ,
1: ऑब्वियसली। शुचिनाम श्रीमताम, या तो पवित्र घर में, किसी घर में एकदम पवित्र वातावरण में जन्म होगा, या तो किसी श्रीमताम पैसे वाले घर में जन्म होगा, क्योंकि पुण्य आत्मा भोग कर आया है। अब इसको भोगने में, अब गरीब आदमी को उठा करके एसी में बिठा दो तो ठंड लगती है, अरे इतना हम नहीं खा सकते हैं, इतना सब हम नहीं कर पाएंगे, वो बेचारा घबराएगा। ट्रेनिंग हुई ना स्वर्ग में, राजा इंद्र के साथ में कुंडों में नहाना, हवाई जहाजों में उड़ना, वो ट्रेनिंग हो गई। अब यू लिव लाइफ लाइक चार्टर्ड प्लेन है अपना, पर्सनल जा रहे आ रहे, मीटिंग्स कर रहे हैं, एसी में ही रह रहे हैं, कोई मेहनत नहीं करनी, रोटी का टेंशन नहीं, चांदी की बर्तनों में खा रहे हैं, सोने के बर्तन है, गिफ्ट दे रहे हैं बड़े बड़े, लिव लाइफ। वो सोच ही नहीं सकते कि नरक भी कुछ होता है, दुख भी कुछ होता है, लिव लाइक दैट। पर मेटेरियल वर्ल्ड के जो कष्ट है वो तो आएंगे ना। जब आप मृत्यु लोक में आ गए तो फायदा क्या, वो नर्क गया वो भी वापस आया, स्वर्ग गया, बस डिफरेंस ये है कि वो गरीबी में आ रहा है, आप अमीरी वार पर, पेन, मृत्यु, शरीर की कैंसर, डिसीजेस, डिप्रेशन, ये तो आ ही रहना। जो लोग बेटर पोजीशंस में जन्म लिए हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम स्वर्ग लोक,
2: मतलब फाइनेंशियली बेटर पोजीशन,
1: फाइनेंशियली बेटर,
2: स्पिरिचुअली बेटर,
1: फाइनेंशियली वेरी हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है, कोई योगी था, स्वर्ग गया योगिक क्रियाओं से, फिर वापिस आया है, तो नाउ ही इज अ वेल बैलेंस्ड, सारा उसका चक्रास बैलेंस्ड है। और एक व्यक्ति है जो निम्न कुल में जन्म लिया, मदिरा में पड़ा हुआ है, शराब किनारे फुटपाथ पे लेटा हुआ है, वो नर्क से आया दिखाई दे रहा है, वो तो आप परसीव भी कर सकते देखकर किसी को।
2: बट एक और फंडा है कि विवेक, जैसे बहुत सारे योगीज हैं उनको बहुत इंटेंस डिजीजेस हुई थी, वो अपना कर्मा सारा इस जन्म में ले लेते हैं, हमारे नीम करोली बाबा ले लीजिए, जो भी थे काफी लोग अपने वो भी थे ना शायद से जिनको कैंसर, रामकृष्ण
1: परमहंस,
2: इनका कैसे आप लॉजिक बताएंगे?
1: एक धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है, वो अपना भी कर्मा लेता है, अपने शिष्यों का कर्मा भी लेता है, कि तुम मुझे दे दो अपना कर्मा, यू बिकम प्योर एंड यू डू साधना, तुम मुझे दे दो, बिकॉज मेरी साधना इतनी स्ट्रॉन्ग है, आई कैन टेक योर कर्मास, अपनी चॉइस से उनके कर्मास को भी ले सकता है, और वो उसको झेलता है बिकॉज ऑफ साधना। साधना काटती है भजन, भजन जो होता है वो पाप और पुण्य दोनों को माइनस कर देगा। तो इसलिए जो पायस आदमी है उसकी जो यात्रा हम जब चर्चा कर रहे हैं, आप इसको सुन लीजिए कंसेप्ट को पूरा, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। स्वर्ग गया, स्वर्ग से वापस आया। अब जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है थर्ड, इसकी साधना की गति कैसी है? स्पिरिचुअल व्यक्ति की शरीर छूटा, मरेगा तो कोई भी सन्यासी भी जाएगा, ब्रह्मचारी ग्रस्ता योगी सब जाएंगे। अब जब इसका शरीर छूटा तो इसके डिसाइपल्स या इसके फॉलोवर्स या इसके प्रेमी, इसके भक्तजन, योगीज सब आसपास खड़े होंगे, एंड एवरीबॉडी विल चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड, जो भी गति शिवा कृष्णा रामा बोलेंगे। उसको सुनते वो शरीर छोड़ेगा, उसके साथ विष्णु के दूत आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे, देवदूत नहीं आएंगे, विष्णु दूत आएंगे, शंख चक्र कमल गदा, और फिर वो उसकी बॉडी को लेंगे और एयरप्लेन में रखेंगे, विच इज कॉल्ड एज गरुणा विमान। And we have many examples. तुकाराम in Maharashtra, कुछ 500 साल पहले हुए तुकाराम जी मराठी संत थे, एंड उनके पूरे विलेज ने उनको गरुण विमान पर बैठकर जाते हुए देखा। उन पर इतनी मूवीज बनती हैं, अभी भी बनती हैं। तुकाराम भजन करते करते गरुण पर बैठे हैं और स्वशरीर अपनी बॉडी के साथ, ज्यादातर लोग तो बॉडी छोड़कर आत्मा जाती है, स्वशरीर जा रहे हैं। भागवत
2: लोगों ने देखा शरीर,
1: हाँ, जाते हुए। तो अभी हम लोग कुछ महीने पहले वही तुकाराम की उस स्थली पे गए थे जहां उन्होंने गरुण पर, तो वहां पे एक मंदिर बना हुआ है उसका नाम है वैकुंठ गमन स्थली, यहां से वैकुंठ चले गए। तो पूरा विलेज तो वही है, विलेज ने जाते हुए देखा गरुण पर बैठ रहे हैं, तो उनकी वाइफ को बोला गया कि आपके हस्बैंड जा रहे हैं, जैसे मेरी वाइफ को बोलेगा आज आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो कहेगी कि हम तो रोज ही कहीं ना कहीं जाते हैं, तो उनकी वाइफ बोली हाँ रोज ही कहीं ना कहीं जाते प्रवचन कीर्तन के लिए, तो बोले नहीं नहीं वैकुंठा जा रहे, कह रहे हाँ वो जहां जाता है वैकुंठा ही होता है, लेकिन बाद में जब उसको जब कई लोगों ने बोला आके देखा तो ही वॉज गोइंग बैक एंड ही वॉज सेइंग द मंत्रा आमी जाता आमचा गावा, मराठी में आमी जाता आमचा गावा, मैं जा रहा हूं अपने गांव। तो अपना गांव मींस जहां से हम आए भगवान के घर से, तो वहीं वापस जा रहा हूं।
2: अच्छा,
1: तो जो लोग नॉन रिचुअलिस्टिक हैं या नॉन स्पिरिचुअल हैं वो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 10-15 लोगों ने ऐसा झूठा भ्रम फैला दिया है और उनको तो किसी ने मर्डर करके फेंक दिया था पानी में, और क्योंकि वो भगवान के बहुत ज्यादा भक्त बन रहे थे, तो इस तरह से वहां के जो नॉन रिचुअल लोग ऐसा बोलते हैं। पर जो उनके वंशज है, मतलब जैसे मैं अपनी दादी के बारे में सही बताऊंगा, मैं अपने पिता के बारे में सही बताऊंगा, तो उनकी अभी 7वीं पीढ़ी है यहाँ पर। तो आई मेट देम एंड दे सेड आपने बिल्कुल सही बोला है, वो ही उनको वैकुंठ गमन हुआ उनका। तो पांडवाज भागवत के अंदर आता है, जो 5 पांडव थे अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव, दे ऑल वेंट टू वैकुंठा। भागवतम के प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 46 नंबर श्लोक में लिखा है स्व शरीर वैकुंठ गमन किए, सब चले गए। परीक्षित महाराज जो पांडवों के आखिरी वंशज थे, उन्होंने सुखदेव से भागवत सुना, वह भी वैकुंठ गमन किए। तो ये वैकुंठ गमन की पूरी भागवत में आपको वैकुंठ गमन मिलेगा। तो उनका कैसे होता है कि गरुण आता है, उनको फ्लाइट पे बिठाता है और ले जाकर के यमदूत वैतरणी नदी पर, तो गाय की जरूरत ही नहीं होगी, तो फ्लाई में जा रहा है ना, और सीधा यमराज के लोक के वहां पर रुकेगा। तो यमराज के लिए वहां डिसीजन के लिए नहीं रुकेंगे, वहां पर रुकेंगे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि यमराज इज वन ऑफ द 12 महाजनाज, 12 महाजन हैं जो धर्म के नियमों का फेर बदल कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ही है जो उसके अंदर आगे पीछे कुछ कर सकती है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। ऐसे ही 12 महाजन शास्त्रों में बताए गए हैं। तो यमराज क्योंकि महाजन है, और एक भक्त जब आता है तो उनको वो वैष्णव ड्रेस में दिखेंगे, धोती कुर्ता विद अ तिलक विद फोल्डेड हैंड्स एंड प्रेइंग थैंक यू सो मच फॉर गोइंग टू वैकुंठा, आई वॉन्ट टू पे माई ओबीसेंसेस, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आप कितना सुंदर जीवन जिए, भजन किए, अब आप वैकुंठा जा रहे हैं, वह जगत जो कुंठा से रहित है, नो एंजाइटी, कुंठा मीन्स एंजाइटी, वैकुंठा मीन्स नो एंजाइटी, उस लोक में जाने के बाद इस संसार में वापिस जन्म मृत्यु चक्र जो स्वर्ग नर्क से आ रहा था ना वापिस वो चाइकल परमानेंट बंद हो गए, अब आप जीवात्मा सदा वैकुंठ में रहेगी और आनंद में रहेगी, ब्लिसफुल आत्मा सच्चित आनंद एटर्नल ऑल नॉलेजेबल ऑल ब्लिसफुल, अपने धाम वापिस पहुंच गए। तो ये 3 क्रियाओं से मृत्यु के उपरांत होता है। अब जो आदमी जीवन में जैसे कर्म करेगा उसकी वैसी ट्रेनिंग वैसा रिटर्न।
2: तो अभी वैकुंठ में मुझे थोड़ा सीन बताइए कैसे, जैसे आपने मुझे स्वर्ग का बताया क्या क्या होते हैं, तालाब होते हैं, यू नो पर्सनल जेट होता है।
1: जी जी जी जी। सो वैकुंठा एक बार एक शास्त्र है बृहद भागवत मृत, उसमें भगवान कृष्ण जो जब द्वापर में आए तो उनके कुछ ग्वाल बालों ने पूछा कृष्ण तुम कहां से आते हो, तो भगवान ने कहा मैं गोलोक से आता हूं। तो सखाओं से तो मस्ती होती थी, भगवान ने बोल दिया साक्ष्य रूप में गोलोक, कह रहे लाला हमको दिखा सकते हो कहां जी गोलोक है, कह रहे चलो दिखा देते, कह रहे कि स्वर्ग से भी ऊपर है, अरे बहुत ऊपर है चलो फिर दिखाओ। तो सारे ग्वाल बालों को लेकर कृष्ण अपना वैकुंठ लोक गोलोक दिखाने जाते हैं। तो व्हेन दे आर क्रॉसिंग, तो अभी मैं आपको पूरा ऐसे बता रहा हूं, वर्टिकल चार्ट बता रहा हूं, वी आर ऑन द अर्थ प्लैनेट, भूलोक भूवलोक स्वर्गलोक तपलोक जनलोक महरलोक ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक पार हो गया तब मेटेरियल वर्ल्ड पूरा हो गया। ब्रह्मलोक के ऊपर देयर इज अ ओशियन कॉल्ड कारण सागर, कारण सागर इज वहां पर भगवान विष्णु का नाम है कर्णोदक्षाय विष्णु, ही इज लाइंग इन दिस फॉर्म आदिशेष के ऊपर कर्णोदक्षाय विष्णु, एंड उनकी बॉडी से एवरी पोर से एक एक बबल निकल रहा है एंड दैट इज वन ब्रह्मांड, जिसके अंदर हर ब्रह्मांड में 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, हर एक में एक एक भूलोक है, और वो उनकी श्वास से निकल रहा है ऐसे करते हैं और एक ब्रह्मांड बन जाता है, फिर एक ब्रह्मांड बन जाता है, फिर एक ब्रह्मांड बन जाता है। हर ब्रह्मांड में 14 लोक है, हर एक में भूमि है, हर एक में स्वर्ग है, हर एक में मून है, हर एक में सन है, ऐसे वो बबल की तरह हवा में एयर फ्लो कर रहे हैं। तब कर्ण सागर के ऊपर जब चलते हैं, सो देन अगेन देयर आर 24 वैकुंठा, 24 वैकुंठा है, उसमें नरसिंह वैकुंठा जहां पर आदि नरसिंह है, नरसिंह रूप में बैठे हैं, देन आदि वरहा वैकुंठा, वहां वरहा रूप में शुक्र रूप में भगवान बैठे हैं, उनकी पूजा हो रही है, नीचे उनके फॉलोवर्स हैं चतुर्भुज रूप में, 400 शंख चक्र कमल गदा लेकर वर्शिपिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड वरहा। तो इस वरहा से ऊपर 24 वैकुंठ पार करके देन कम साकेत लोक, साकेत में लॉर्ड रामचंद्र इज देयर एंड देयर सो मेनी वानर्स एंड सो मेनी सब लोगों की अयोध्या धाम साकेत धाम में रामचंद्र जी इज मूविंग लाइक अ किंग एंड सारा जैसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, नित्य उनकी लीला चल रही है। देन आफ्टर साकेत देयर कम्स जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ इज देयर एंड उनके जो जैसे आप उड़ीसा में देखते हैं भुवनेश्वर में देखते हैं सेम इज द एटर्नल वैकुंठा में आदि जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। जगन्नाथ के ऊपर जब चलते हैं सो देन कम्स द्वारिका नगरी, द्वारकाधीश जो है तो वहां पे द्वारकानाथ बैठे और उनकी जो लीलाएं यहाँ पर हुई वो सारी लीलाएं यथारूप ऊपर हो रही हैं। देन कम्स मथुरा धाम, मथुरा में जो मथुराधीश की लीलाएं वहां पे मथुरा धाम एंड देन उसके ऊपर वृंदावन, गोलोक वृंदावन, तो वहां पर काउज है एंड राधा कृष्ण इज सिटिंग इन द सेंटर एंड 8 पेटल्स आर देयर इन दी लोटस फ्लावर, उनके अष्ट पंखड़ियों पर अष्ट सखियां बैठी हैं। एवरीबडीज पर्पज इज टू सर्व राधा कृष्ण, बस इतना करना है कि कैसे राधा कृष्ण संतुष्ट हो, यही उनके जीवन का भाव है। तो उस उनकी जो पेरिफेरी उसमें 1000 पेटल्स, फिर 100 पेटल्स, फिर 8 पेटल ऐसे ऊपर टॉप में है, तो नीचे 1000 में अनेक अनेक जीवात्मा है, उसके ऊपर 100 में है, उसके ऊपर 8 में उनकी मुख्य सखियां हैं ललिता विशाखा सुदेवी भूदेवी रंग देवी तुंग विद्या, वो सब बैठी हुई हैं। तो कोई पान खिला रही है भगवान को, कोई चंवर कर रहे हैं, कोई पंखा कर रहे हैं, दिस इज राधा कृष्ण लोका। सो दिस प्लेनेटरी सिस्टम इज लाइक दिस प्लैनेट, ऐसे ऊपर जा कर्व, ऐसे कर्व है ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है। तो हम जो है कर्ण सागर जो है उसके नीचे असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के बबल के पृथ्वी के जिसमें 75% पानी है, उसकी 25% भूमि है, उसमें 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट एशिया, उसकी एक इंडिया, इंडिया की एक सिटी दिल्ली, दिल्ली के पास यहाँ छोटी सी आत्मा वो गोलोक जाने का प्लानिंग कर रही है। तो दैट कैन बी डन ओनली बाय व्हेन यू आर निष्काम, नो डिजायर्स इन लाइफ, तब भगवान के जाने का कुछ क्वालिफिकेटरी सिस्टम है, ये पास करो ये पास करो, पर उसमें ये है नो डिजायर्स।
2: एक इंटरेस्टिंग स्टडी थी, आई थिंक व्यूअर्स को भी इंटरेस्टिंग लगेगा, एक डच कार्डियोलॉजिस्ट थे प्रभु जी, उन्होंने 3344 कार्डियक पेशेंट्स जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था उनसे पूछा और ये रिकॉर्ड किया उन्होंने। उन्होंने ये देखा कि ये सारे 344 ने कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस बताए कि एक व्हाइट लाइट आती है, हम टनल से गुजरते हैं, कोई बाउंड्रीज होती हैं, कुछ तो सीमा का एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो होता है ना कि एक नियर डेथ एक्सपीरियंस में जाते हो, और मुझे लग रहा है वैसा ही कुछ होता होगा जब एक्चुअली में इंसान लाइफ से डेथ के बीच के ब्रिज में मे बी वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करता होता, ये क्या एग्जैक्टली है?
1: तो नियर डेथ एक्सपीरियंस और एक है साइंस में आउट बॉडी एक्सपीरियंस, मेरा भी एक एक्सपीरियंस हुआ है आउट बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ तो नहीं है लेकिन आउट बॉडी एक्सपीरियंस है। मैं काफी समय पहले की बात है, 2012 में आई वॉज सफरिंग विद सम ईयर डिसीज, तो उस समय ईयर से मेरे ना ब्रेन का लिक्विड बाहर आता था विच इज कॉल्ड एज सेरिब्रम ऑटोरिया। तो ट्रीटमेंट तो क्या हुआ, उन्होंने क्लीनिंग व्लीन किया और बोले पता नहीं चल रहा है, इसके लिए तो ब्रेन सर्जन के पास रिकमेंडेशन है, ब्रेन सर्जन देखेगा। तो मेरे को उसमें लिफ्ट में लेकर आए, अचानक ही शरीर से कुछ निकला और नाउ आई एम सिटिंग ऑन दी व्हील चेयर बट आई एम सींग माई बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ दी व्हील चेयर, आई एम सींग माई सेल्फ ओनली, मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूँ, सो मच अटैच होता है ना आत्मा, तो मैं ऊपर अपनी लिफ्ट के टॉप में हूँ और मैं नीचे से बहुत दूर से ऐसे देख रहा हूँ कि एक लटका हुआ बॉडी ऐसे लटका हुआ है। जब कोई डेथ होती है तो लटक जाता है ना, ढीला होता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा निकलती है आदमी ढीला हो जाता है। तो मैं ऐसे हो गया, तो मेरे साथ जो रिलेटिव्स करते थे वो ऐसे करके स्लैप करने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो मुझे दिख रहा है कि वो लेकर दौड़ रहे हैं, आई एम फॉलोइंग लाइक अ कैमरा ड्रोन, उनको कैरी कर रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। इमरजेंसी में ले जाकर एक बेड के ऊपर लिटाया और वो शॉक्स होते हैं ना, वो मैग्नेटिक शॉक्स लगाए, तो मैं अभी भी ऊपर हूं और मैं देख रहा हूं लगा रहे हैं और बॉडी ऐसे पड़ा हुआ है, और जो डॉक्टर्स मुझे ट्रीट कर रहे हैं वो सारे आ गए वहां पर। देन अगेन वो लगा रहे हैं, फिर एक झटका आ रहा है, फिर लगा रहे हैं, फिर झटका आ रहा है, ऐसे 2-3 बार हुआ। थर्ड टाइम उन्होंने कहा लास्ट चांस, अगर टक किया तो जो टॉप शॉट था ना वो वापस इन शॉट हो गया, और मैं फिर डॉक्टर को ऐसे देख पा रहा हूँ अपने, और मैंने देखा और वॉमिटिंग किया, डॉक्टर बोले रिवाइव हो गया रिवाइव हो गया, एंड फाइनली बाय द मर्सी ऑफ गॉड आई वॉज सेव्ड। लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस था। सो ये मैं जानता हूं कि उस समय अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे टनल दिख रहा है या ये दिख रहा है, सबके डिफरेंट अनुभव होते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको 13 दिन तक उसी स्थान पर रहना होता है। तो लोग स्टोरीज बताते हैं कि मैं मर गया था, फिर मैं यमलोक चला गया, फिर वहां बोले टाइम नहीं है, फिर वापस भेज दिया, ऐसा नहीं होता। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शास्त्र इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे और हम हर चीज शास्त्र से चलते हैं। शास्त्र कहते हैं 13 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसकी मृत्यु होती है। सो मैंने भी अनुभव किया कि आई वॉज फॉलोइंग माई बॉडी, इतनी आसानी से अपनी बॉडी छोड़ी नहीं जाती है।
2: आदमी ऐसा नहीं कि अभी मर गया
1: और मेरे को बॉडी से डिटैचमेंट हो गया, मैंने उड़ गया अपने हवा में, ऐसा हो नहीं सकता है। इतने साल आप रहे हो, 60-70 साल, आपकी अंगूठी होती है, पेन होता है, उससे अटैचमेंट हो जाता है, मेरा पेन, मेरा बोर्ड, मेरी रिंग, आप इस बॉडी में हो उससे अटैचमेंट नहीं होगा। जब जलती है ना, रोता है वहां बैठ के क्रिमिनेशन ग्राउंड में, मेरी बॉडी को मत जलाइए प्लीज, मत जलाइए। और एक बच्चे का भी यहाँ पर IBN 7 ने रिकॉर्ड किया था, उसका पुनर्जन्म का, बल्लभगढ़ फरीदाबाद पलवल के पास उसका रीबर्थ हुआ है। तो उसने बताया उसका एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर से, वो बच्चा बताता है कि मैं निकला शरीर से और जब 13 दिन तक मैं अपने घर के पास रहा, तो गरुड़ पुराण में जो लिखा है तो वो उसकी बात मैच हो रही थी। उसने गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा है, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, और मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा था तो मुझे वो एक्सपीरियंस मैच हो रहे थे कि 13 दिन तक का बोल रहा है, इसका मतलब सही बोल रहा है।
2: अभी 13वीं होती तभी 13 दिन होता है। 13 दिन होते हैं। योगिक शास्त्र में ये भी कहा है ना कि जैसे 5 वायु होते हैं, तो पहले अगेन व्यूअर्स के लिए आप मुझे बताइएगा मैं जहां गलत हूं, फर्स्ट 21-24 मिनट्स कहते हैं समान वायु निकलती है, उसके बाद 48-64 मिनट्स आपकी प्राणवायु निकलती है, उसके बाद आपके करीब 6 और 12 घंटे के बीच में उद्यान वायु निकलती है, फिर व्याना, फिर अपाना।
1: अपाना
2: तो ये करीबन 13 दिन का प्रोसेस है। और मेरे ख्याल से प्राणवायु तक हम बॉडी को रिवाइव भी कर सकते हैं, योगीज ने रिवाइव किया हुआ है बॉडी को,
1: किया हुआ है।
2: क्या आप इसके बारे में थोड़ा मुझे बता सकते हैं?
1: देखिए रिवाइविंग के तो हम वो नहीं कहेंगे, क्योंकि रिवाइव करना ठीक भी नहीं है। मैंने जैसे बताया मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ एक्सपायरी डेट फिक्स है, अगर आप कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस या सिद्धि से उस शरीर को पुनर्जीवित करते हो तो उसके लिए वो दुखदायी होगा। जैसे उस बच्चे ने बताया कि जब मैं शरीर से निकला तो मुझे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया दिल्ली के अंदर।
2: ये भी मैंने बहुत सुना है।
1: तो तांत्रिक ने जब मुझे कैद कर लिया तो मैं उसकी बॉटल में बंद रहा और मैं ये सोच रहा था कि वापस मैं कैसे निकलूं, तो एक दिन उसकी बॉटल हवा के जोर से गिर गई, ब्रेक हुई तो मैं आजाद हो गया, एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग बैक टू माय होम, लेकिन वहां तब तक तो मेरी बॉडी जल चुकी थी, सब हो चुका था, तो अब मैं जाऊं कहां?
2: अगर तो बॉडी नहीं जलती तो क्या करता?
1: तो वो रिवाइव करता ना, वो आत्मा घुसने की कोशिश करती ना, और घुसती तो वो क्या करती, लोगों को परेशान करती, क्योंकि वो एक्सटर्नली अब दोबारा रिवाइव कर रही है जो कि उसकी नेचुरल डेथ के टाइम से एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे
2: हैं। आपने कहा एक तांत्रिक था, उसने इसके सोल को कैप्चर कर दिया, इसलिए कैप्चर किया होगा,
1: इसलिए कैप्चर किया कि अपने कर्म पूरे कराने, जैसे मैंने बोला ना
2: अच्छा,
1: किसी और पोजेशन बॉडी किसी और पे चढ़ा करके मुझे उसके मन को केंद्रित करना है, उसको वशीकरण करना है, अपने कर्तव्य करवाने हैं। सो ये जो सोल्स होती हैं इनके पास बॉडी तो होती नहीं, पर दे कैन डू द वर्क। जैसे मतलब मुझे फ्लैश कार्ड खेलने हैं और मुझे पता करना है उसके फ्लैश कार्ड में क्या है, तो मैं बोलूंगा उधर से खड़े होकर के बताओ मेरे को, बिकॉज तांत्रिक कैन सी दी सोल ना, तो वो बात कर रहा है, बोले बताओ, बोलेगा जी इक्का बोल दो, तो इक्का बोल के जीत जाएगा वो।
2: ऐसी चीजों के लिए यूज,
1: नेगेटिव चीजों के लिए यूज करते हैं, वशीकरण के लिए, लड़की के ऊपर चढ़ जाओ, बोलो शादी के लिए हाँ बोल दे, बोलेगी हाँ बोल देती हूँ।
2: ये डिसएम्बॉडीड बीइंग से कराते
1: हैं। उसी से तो कराते हैं, और कैसे तांत्रिक, और ये तो मैंने बोला ये सिद्धि का क्या फल है जो लोगों के लिए कष्टकारी है, वशीकरण करना, टॉर्चर कर रहे हो आप किसी को।
2: और इनकी लेकिन डेथ बहुत पेनफुल होती नहीं तांत्रिक्स की?
1: बहुत बुरी। अभी एक थे वो हमारे जानकार थे, ये उन्होंने गोरखनाथ सिद्धि करी थी, तो उसने कुछ सोल भेजी थी किसी को मारने के लिए, वो सामने वाला व्यक्ति पावरफुल था, वैदिक था, वैदिक होने के कारण वो सोल उसको अटैक नहीं कर पाए, वो बोली हम तो निकल गए, अब वो री अटैक करने उस पर आई, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 41 ओनली, उसको आकर के सोच ने री अटैक कर दिया। इसलिए तांत्रिक विद्याएं या जो भी विद्याएं हैं देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगेंगी कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, पैसा आ सकता है, पावर आ सकती है, कोई भी हमारा हो सकता है, किसी का नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, बट ये तो सारा डिस्टर्बिंग सोसाइटी की कुछ कार्मिक रिएक्शन चल रहे हैं ना, नेचुरली भगवान के विधा है, आप उस विधा में इंटरफेयर करके अपनी विधा से उसको परिवर्तन करना चाह रहे, इट मींस यू आर इंटरफेयरिंग दी एकोलॉजिकल सिस्टम।
2: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्रिवेंट कैसे करें? जैसे मेरी कल सोल हेड मैं निकल गई, अब मेरे को कोई तांत्रिक ने ट्रैप कर दिया, कोई
1: उसके लिए तो हम जो वैदिक क्रिया करेंगे अच्छा, शमशान में
2: ओके,
1: पिंडदान अच्छा, पूजन 13वीं वो इसीलिए होता है ताकि कोई आत्मा ट्रैप ना कर सके।
2: अच्छा उसके लिए होता है ओके। एक कॉन्सेप्ट है प्रभु जी भैरवी यातना का, लाइफ टाइम्स ऑफ कर्मा बिगिन टू प्ले आउट एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही इंटेंस मोमेंट में।
1: भगवान गीता में बोलते हैं अंत काले चमामे व स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत काल जब आता है तो उसमें एक पूरी पिक्चर चलती है LCD स्क्रीन के ऊपर, वॉट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ दिस लाइफ, तो सारा का सारा दिखाते हैं। पूर्व में तुम स्त्री थे, तुम्हारी आसक्ति एक पुरुष में थी, तुम पुरुष बने, तुमने पुरुष बन करके ये कर्म किए, और अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा यहां समाप्त हो रहा है। क्या तुम निश्चय करते हो अगले शरीर में जाकर के अब तुम सटल हो गए, तो आदमी कहता है मैंने तो इतने पाप किए हैं, मेरी तो मुक्ति ही नहीं हो सकती है। बोले कम से कम अभी भगवान का नाम बोलो, अंतकाल में भगवान का नाम बोलो। लेकिन उसका एनवायरमेंट ही नहीं है, बाहर कोई बोल ही नहीं रहा, तो वो जीवात्मा तो शरीर छोड़ ही रही है तो बोल ही नहीं सकती है। अंतकाल में सारी कार्मिक अकाउंट आगे खड़ा हो जाएगा, जितना झूठ फरेब जो भी किया। इसलिए कहते बचपन से कौमार आचरित प्रज्ञा, अब कौमार अवस्था से बच्चे को वैदिक क्रियाओं में लगा दो, ताकि जब उसका अंतकाल जब भी आए तो उसके दिमाग में जो उसने वैदिक क्रियाएं करी, यज्ञ किए, पूजा करे, धाम किए, तीर्थ किए, जो भी किया, वो सब एक्युमुलेट होकर के इकट्ठा उसको आएगा, देन ही कैन टेक आउट द गॉड्स नेम। और अगर उसने अंत में स्मरण नहीं किया तो उसका, आपको बताया मैंने कि उसकी फिर योनि परिवर्तन हो जाएगा। बताते हैं कि एक राजा थे, वो राजा की इच्छा थी, राजा ने बड़े इतना उत्तम स्थिति में पहुंच गया था कि उसको भगवान के धाम जाना ही जाना था। लेकिन उसकी जब शरीर छोटा, उसका मंत्री उसको जानता था कि बड़ा वैदिक व्यक्ति है। अब जब राजा का शरीर छोटा, उसने बोला देवता लोग ना पुष्प वृष्टि करेंगे, फ्लावर्स गिरेंगे ऊपर से, देखना सारे राज्य इकट्ठा होगी, राजा जी जाने वाले हैं, क्रॉनिक डिसीज हो गया है, तो जरूर पुष्प गिरेंगे क्योंकि धाम को जाएंगे, बड़े नेक राजा है। पर देखा कि एक भी पुष्प नहीं गिरा, तो मंत्री को बहुत बुरा लगा कि राजा के वर्ड्स पूरे नहीं हुए और अब सारा राज्य उनको गलत राजा मानेगा, झूठ बोला मानेगा, तो मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा राजा इतने ज्ञानी थे, ऐसा क्या हो गया, इन्होंने सारे अटैचमेंट छोड़ दिए थे, कुछ तो अटैचमेंट था जिसके कारण इनको पुष्प वृष्टि नहीं। देखा तो उनके राज्य में जहां शरीर छूटा उसके वहां पर एक विंडो थी, खिड़की, खिड़की के बाहर एक बेर का पेड़ था। अब राजा को बेर बड़े पसंद थे खाना, कह रहे इनको बेर पसंद थे, कहीं बेर देखते हुए शरीर छूटा, बेर में कीड़ा तो नहीं बन गए। अब 13 दिन तक की 13वीं हुई जब वो आत्मा को डिसीजन हुआ, और फिर उस मंत्री ने क्या किया, सारे समाज को बोला कि अभी 1 वर्ष बाद हम लोग राजा की जो बरसी करेंगे ना, उसमें बेर की भोजन लगाएंगे। सारे बेर तुड़वाए उस पेड़ पर जितने थे, और सबको चीला बोले इसमें अगर कोई कीड़ा निकले तो मुझे बताइएगा। तो एक बेर में कीड़ा निकला, तो उन्होंने कहा कि इस कीड़े को मैं मारने का पाप ले रहा हूं, क्योंकि अगर आप कीड़े को भी मारते तो आपको कीड़ा बनना पड़ेगा, मैं कीड़े को मारने का पाप ले रहा हूं, लेकिन मैं राजा की मुक्ति चाहता हूं। तो उसने वो कीड़े को मारा, आकाश से पुष्प गिरने लगे। लिटिल अटैचमेंट टू द फूड ऑफ प्रोडक्ट आल्सो कैन ब्रिंग यू बैक टू दिस मेटल वर्ल्ड। माय
2: गॉड। प्रभु जी मेरे पास क्विक रैपिड फायर है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, स्लीप में मरना, क्या एक अच्छी डेथ माना जाता है इसको?
1: देखिए एक्सटर्नली और इंटरनली दो प्रकार की डेथ है। एक्सटर्नली आदमी सोचता है कि मुझे ज्यादा कष्ट ना हो, सोते सोते मृत्यु आ गई, हार्ट अटैक हुआ रात में, अरे पिताजी की बड़ी अच्छी मृत्यु हुई, रात को सो रहे थे चले गए, किसी की रोड पर हो गई, बड़ी कष्टकारी मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हो गया, तड़प तड़प के मरना पड़ा हॉस्पिटल में। इन बोथ द केसेस डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु दोनों केस में आ रही है। तो एक्सटर्नली जो आप कह रहे हैं ठीक है कि हर आदमी सोचता है कि मेरी थोड़ा सिंपल, ज्यादा कष्ट ना हो, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों केसेस में आपको पता नहीं चल रहा, कष्ट तो सोल को हो रहा है। सोल को किस चीज का कष्ट होता है? शरीर का कष्ट नहीं होता, सोल को कष्ट होता है अटैचमेंट का। कहते हैं जब मृत्यु आती है 40,000 बिच्छू डंक मारे इतना कष्ट होता है।
2: अच्छा।
1: एक जगह पर स्कॉर्पियन मारे तो कितना दर्द होता है, स्कॉर्पियन बाइट, 40,000 स्कॉर्पियंस लिखा है, 40,000 बिच्छू डंक मारे इतना पेन होता है जब सोल को बॉडी से अलग करते हैं,
2: हर सोल को।
1: और एस्ट्रिक मार्क में नीचे लिखा है जिसका जितना ज्यादा अटैचमेंट संसार से है, प्रपंचिक संसार में ही रचे पचे हैं बच्चे, परिवार में, प्रपंचिक संसार में रचे पचे हैं उतना ज्यादा, एंड यू आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फ्री मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
2: सोल रीबर्थ का सबसे छोटा टाइम क्या होता है और सबसे बड़ा टाइम क्या होता है?
1: सबसे छोटा टाइम है 4 ईयर्स।
2: अच्छा, मिनिमम 4 ईयर्स वो लेगा रीबर्थ होने में सोल?
1: 1 साल तो ट्रेवल,
2: हाँ,
1: 1 साल के बाद में उसका बरसी जब कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में उसकी प्लेसमेंट टू दी नर्क, स्वर्ग, और एक लोक है जिसकी हमने चर्चा नहीं की, पितृलोक, जिसमें पितृ श्राद्ध का भोजन पहुंचता है। सो पितृलोक जो है दैट इज अ वेटिंग स्टेशन। स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन आई नहीं है, आपका टिकट भी बुक है, 4 घंटे 5 घंटे लेट है, तब तक आप क्या करोगे? वेटिंग रूम। सो पितृलोक इज अ वेटिंग रूम बिफोर गोइंग टू नर्क और स्वर्ग। डिसीजन ही नहीं हुआ, इतनी लंबी फाइल है, संयमपुरी लोक में आप पहुंचे, वो बोले यमराज बोले कि रुको अभी इसका निर्णय होने में टाइम लगेगा, इनको पितृलोक में बिठा दो थोड़ी देर के लिए। तो पितृलोक में बैठ जाना इस वेटिंग स्टेशन। इसलिए जो यहाँ श्राद्ध का भोजन लगाते हैं, लोग बोलते ना अरे वो तो मर गए होंगे, वो पता उनको हमारा मिलेगा। अरे तो अभी तो नरक में भी नहीं गए, स्वर्ग में भी नहीं गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा उस आत्मा की, अभी तो वेटिंग में ही है, तो उसको भोजन कौन देगा? वही फैमिली के जो लोग हैं, वही डिसेंडेंट्स ही उसको अपने एंसेस्टर को भोजन देंगे। तब तो पितृलोक का भोजन जाएगा कैसे? ये क्रिया सूक्ष्म होती है। जैसे इंडिया में बैठा व्यक्ति अमेरिका में अपने बच्चे को 10 लाख रुपए देना चाहता है, इंडियन करेंसी में डालेगा, वहां उसको डॉलर में निकल जाएगा। क्या पैसे ऐसे उड़ उड़ के जा रहे हैं अमेरिका? ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्सटर्नली तो नहीं दिख रहा ना, आपने तो इस बैंक में दी, इंडियन बैंक में। वो इंटरनली क्या हुआ? इंटरनेट से उसके बैंक में शो हो रहा है कि आ गए। अब वो जब पेटीएम या एटीएम में डालेगा कार्ड, तो उसको करेंसी डॉलर में निकल रही है। तो श्राद्ध का भोजन, पूड़ी सब्जी आलू रोटी जो भी बनाया, ब्राह्मण को या गाय को दिया, इंडियन, अब सूक्ष्म माइग्रेशन हो रहा है वाया एयर मीडियम, दैट भोजन इज गोइंग टू योर पित्रा, और वो वहां पर जब निकालेगा तो उसको उसके भोजन के रूप में मिल जाएगा।
2: फैमिली मेंबर्स रोते हैं जब किसी की डेथ होती है, पर सोल को ये रोना पसंद नहीं आता।
1: हाँ, नहीं पसंद है, क्योंकि जो हमारे टीयर्स होते हैं ना, दे बिकम कफ, जैसे कफ है ना, हम उसको स्पिट करते हैं, कफ को पीते खाते नहीं है, पर सोल को टीयर्स जो है कफ रूप में खाने पड़ते हैं।
2: अच्छा,
1: इसलिए जब परिवार में शरीर छूट जाता है, रोना नहीं चाहिए। जितना आप रुदन करेंगे उतना ज्यादा सोल को कष्ट होता है, कफ रूप में उसको भोजन मिलता है, गरुण पुराण कहती है। पर तो इमोशनल एंगल भी देखें आप, जो मैंने फील किया है, छोटे बच्चे को प्रेप में छोड़कर आओ भाई, उसको स्कूल हम ही भेज रहे, अब बच्चा चाह रहा है कि माँ मेरे साथ रुक जाए, तो माँ छोड़कर आती, बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है, माँ को बिल्कुल मन नहीं करता, हार्ट बड़ा हार्ट टोन हार्ट बनकर आती है, 2 घंटे बाद सर मैडम को फोन करती है, हाउ इज डूइंग, क्यों फोन करती है? पता करने के लिए कि सेटल हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली जीवात्मा है, जो परिवार में होती है, शरीर छोड़ती है, तो उसको जब रोते हैं तो बहुत कष्ट होता है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पूछती है भाई सेटल करने के लिए कोई नहीं है क्या, कोई तो इनको गीता भागवत गरुड़ पुराण सुना दो, बहुत नहीं रो रहे हैं और ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो बड़ा प्रसन्न।
2: अच्छा,
1: वेरी नाइस, कितने थे को संस्कार, कितने समझदार थे। जैसे एक चीज और है, द मोर यू आर अटैच यू विल कम बैक अगेन द सेम फैमिली,
2: इसको सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। अच्छा,
1: सेम फैमिली में लोग खुश भी होते हैं, देखो दादाजी से दिख रहा है, दादाजी वापिस आ गए, आत्मा तो अच्छा हुआ, उनको मुक्त होना चाहिए था, वो वापिस आ गए, कर्म बंधन ऐसा वापिस ले आया। इवन टू दी रेप्टाइल्स इन अवर फैमिली, लिजर्ड्स हैं ये है, कोई दादी हो सकती है जो असक्त थी, पर कर्म इतने नहीं थे कि मुक्त हो जाए, तो लिजर्ड बने के लिए रहूंगी उसी परिवार में।
2: अच्छा,
1: सो इसलिए आसक्ति बहुत बुरी चीज है। एक बार एक छोटी सी स्टोरी बताकर मैं एंड करता हूं। व्यक्ति था, वो हरिद्वार पे रहता था, जप करता था, तप करता था, ध्यान करता था, योग क्रिया करता था। तो नारद मुनि निकले, नारद मुनि भगवान के पास गए, भगवान इतने दुनिया में लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, हट योगा, आप लाते क्यों नहीं उनको अपने धाम में? भगवान बोले वो ऊपर से कर रहे हैं, अंदर से कोई नहीं आना चाहता। नारद जी बोले कैसी बात करते, मैंने देखा एक आदमी एकदम आंख बंद करके दिन रात लगा हुआ जप कर रहा है, ट्राई कर लो। नारद जी उसके पास गए, उसको दिखने लगे, बोला अरे नारद मुनि आपको शास्त्रों में पढ़ा था, मुझे दिख रहा है, थैंक यू फॉर कमिंग। बोले तुम्हारे को भगवान ने बुलाया है, चलोगे? कर चलना तो चाहता हूं, पर अभी एक्चुअली क्या है ना, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, तो मेरा भी बहुत पूरा प्लानिंग है, मैं जाऊं भगवान के धाम, नहीं बच्चों की प्लानिंग, एक बार आप थोड़ा सा काल मुझे दे दीजिए। नारद मुनि बोले ठीक है। नारद मुनि ऊपर चले गए, अब ऊपर का मैंने बताया वहां तो 1 मिनट, यहाँ का कई मंथ्स निकल जाएंगे, वो एक क्षण के लिए ऊपर गए, वापिस आए तो यहाँ वर्ष निकल गए। नारद जी वापिस आए तो देखने लगे उस घर में वो आदमी नहीं दिख रहा, जप करता था, ध्यान लगाया त्रिकाल, अपनी ज्ञान से उन्होंने देखा, सर्वज्ञ नारद मुनि ने, अरे उसी घर में एक बुल बन गया, बैल। तो बोले अरे तुम बैल बन गए हो काशीनाथ जी? नारद जी कह रहे अब तो तुम फिर भी गौ योनि में आ गए हो, मनुष्य योनि से, मतलब रिवर्स साइकिल चल रहा है, जो कौ लास्ट योनि से मनुष्य गया, मनुष्य से काऊ बन गया। बोले अब तुम काऊ बन गए, रिवर्स योनि में चले गए, अब तो चलो भगवान बुला रहे। कह रहे आपकी बड़ी कृपा हुई, बच्चों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद ऐसे हो गए कि घर में बड़ी गरीबी आ गई है, किसान के खेत में काम करने के लिए ना ट्रैक्टर है ना बुल है, तो एक साइड मेरा बेटा लगता है, एक साइड मैं लगता हूं, तो मिलकर हम खेत जोतते हैं। थोड़ा सा समय दे दीजिए, एक बार अनाज उत्पन्न होने लगे फिर मैं आपके साथ ही चलूं। क्या करना, भगवान के घर ही जाना? नाराज जी फिर चले गए। फिर ध्यान लगाया, वापिस आए तो देखा कि उसी घर में एक डॉग बनकर बैठे हुए। कह रहे, अरे आप डॉग बन गए हो काशीनाथ, ये क्या क्या और नीचे योनि में आ गए? कह नाराज जी आपकी बड़ी कृपा हुई, इस बार बहुत अच्छी फसल आई, इतना पैसा आया, बच्चे इतने लापरवाह हो गए, घर में ताला भी नहीं लगाते चले जाते हैं, तो मैं बाहर डॉग बन के घूमता हूं गली में ताकि मेरे बच्चों को घर के अंदर चोरी ना हो। चलोगे काशीनाथ? क्या थोड़ा समय दे दीजिए, एक बार बच्चों को मैं बना दूं ना थोड़ा संस्कारी समझदार, फिर चलूंगा। ठीक है चल। वे क्षण वाला है, यहां कई वर्ष बीत गए, अब देखा कुत्ता भी नहीं है। फिर ध्यान लगाया तो पता चला कि वो जो घर की अंदर जो फूड ड्रेन होती है ना, नाली घर के खाने की, सिंक किचन की, उसमें कॉकरोच है। तो बोले, अरे काशीनाथ तुम कॉकरोच बन गए हो, अब तो चलो। कह रहे, नाराज जी मैं तो चलना चाहता हूं, लेकिन ना इसके अंदर जब खाना खाते मेरे बच्चे तो अन्न छोड़ देते हैं थाली में, इनके बच्चे इतने लापरवाह हैं, इनको नहीं पता अन्न में अन्नपूर्णा है, और अन्न अगर नाली में गया तो अपराध होता है अन्नपूर्णा का, इनको पाप लगेगा, इसलिए मैं कॉकरोच बन के इनका अपराध खत्म करके वो अन्न ड्रेन का सारा खा जाता हूं। सो थोड़ा समय दे दीजिए। थोड़ी देर में उसका वो आया बच्चा, उसने देखा कॉकरोच, पापा कॉकरोच घर में, वो तो दादाजी थे। बच्चे का बच्चा आया, उसने एक डंडा लिया कॉकरोच को मारने के लिए, भागा पीछे भागा, सीट लिया ये लिया, बोले सिक सिक करके मार दिया उसको। तब वो आत्मा बाहर निकली। तब नारद जी बोले, अब चलोगे कि और पिटना है अभी? कहें नारद जी अब समझ गया कोई किसी का नहीं होता, देन ही लिबरेट। सो वी आर सो अटैच्ड, वी डो नॉट वॉन्ट टू गो। तो जितना भी हम ज्ञान की चर्चा कर ले, ये सब वर्बल रहता है, इंटरनली चेंज नहीं होते कुछ भी। सो वंस हू वांट्स दैट लिबरेशन, उस पाथ पे चले तो निश्चित रूप से उसकी एक अच्छी मृत्यु हो सकती है, संसार चक्र मुक्त हो सकता है उसका।
0: तो आप सुन रहे थे गरुड़ पुराण पर आधारित एक इंटरव्यू को प्रशांत मुकुंद प्रभु और श्लोक के मध्य में, और अब आप सबकी सेवा में कुछ भक्तिमय कीर्तन।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Good morning, Brisbane. A very warm welcome to everyone tuning into Brisvani. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन, और आज के मॉर्निंग को बनाते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव और बहुत सारा एंटरटेनिंग। जी हाँ, और ब्रिस्बेन वालों के लिए भाई आज का दिन है पीपल्स डे, तो अगर आज आपका डे ऑफ है एंजॉय कीजिए, और अगर काम पर जाना है तो भाई कोई बात नहीं, ब्रिस्वानी तो आपके साथ ही है। तो आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर विद आरजे चांदनी जैन। तो आज हम बात करेंगे ब्रिस्बेन के लेटेस्ट अपडेट्स की, एका की कुछ इंटरेस्टिंग बात की, और एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की, और एंड में होगा भाई हमारा स्पेशल मॉर्निंग मोटिवेशन। सो ब्रिस्बेन कॉफी रेडी रखिए, मूड को रेडी रखिए, और वॉल्यूम थोड़ा सा अप कीजिए। देन लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ब्रिस्बेन का वेदर। आज वेडनेसडे को वेदर काफी प्लेजेंट रहने वाला है लॉन्ग सनी स्पेल्स के साथ। मॉर्निंग में हल्का सा कूल फील हो सकता है, लेकिन डे के साथ टेम्परेचर जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो भाई, जो भी लोग है आज एका जा रहे हैं, कंफर्टेबल क्लोथ जरूर पहने, सनस्क्रीन और पानी जो है जरूर साथ में रखिए। और एक लिटिल रिमाइंडर, वेदर चाहे कितना भी ब्यूटीफुल हो, आउटडोर डे पर दोस्तों हाइड्रेशन को इग्नोर मत कीजिएगा। तो आप अभी इस गीत को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अपने हर एक पल को एंजॉय जरूर कीजिएगा। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रसवानी में। सो ब्रिस्बेन आज की सबसे बड़ी लोकल स्टोरी ऑब्वियसली है एका। रॉयल क्वींसलैंड शो इस साल अपने 150 इयर्स सेलिब्रेट कर रहा है और एका 8 अगस्त से 16 अगस्त तक जो है ब्रिस्बेन शो ग्राउंड्स में चल रहा है। और आज है पब्लिक डे, यानी कि पीपल्स डे, ब्रिस्बेन का एका पब्लिक हॉलीडे, मतलब कि राइड्स, फूड्स, एनिमल्स, एंटरटेनमेंट और ऑब्वियसली दोस्तों स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। एका का नाम आए और स्ट्रॉबेरी संडे याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सो आइए आप जरूर खाइएगा और साथ ही साथ आइए अब सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं ब्रिस्बेन क्विक न्यूज राउंडअप। दोस्तों, क्वींसलैंड रेल ने कॉम्यूटर्स को सेफ्टी को लेकर रिमाइंडर दिया है, स्पेशली रेलवे स्टेशंस और ट्रैक्स के राउंड अलर्ट रहने के लिए। रिसेंट क्लोज कॉल इंसिडेंट्स के बाद अब सेफ्टी मैसेज को हाईलाइट किया गया है, यानी कि सिंपल रूल है, ट्रेन के अराउंड शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्वींसलैंड में एका का 150th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेशन का मेजर फोकस बना हुआ है। एका सिर्फ राइड्स और फूड का इवेंट नहीं है दोस्तों, बल्कि क्वींसलैंड के एग्रीकल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वहीं पर ब्रिस्बेन की फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो सिटी 2032 ओलंपिक्स की तरफ स्टीडली जो है मूव कर रहा है। ब्रिस्बेन को ओलंपिक होस्ट सिटी बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर फोकस कंटिन्यू है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, इसी के साथ अगर हम स्पोर्ट्स अपडेट की बात करें तो फुटबॉल फैंस के लिए ऑस्ट्रेलिया कप का एक्शन कंटिन्यू है और राउंड ऑफ 16 फिक्स्चर ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं और ब्रिस्बेन के फुटबॉल फैंस के लिए टूर्नामेंट का एक्साइटमेंट डेफिनेटली हाई है। और स्पोर्ट्स का एक सिंपल लेसन भी है, जी हाँ, मैच हो या लाइफ, स्कोरबोर्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कमबैक। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी, प्रोग्राम चल रहा है जाने का सफर। तो आप थोड़ा मूड दोस्तों चेंज करते हैं, टाइम फॉर ब्रिस्वानी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। जी हाँ, ब्रिस्बेन में लाइव म्यूजिक का सीन काफी एक्टिव है। रिसेंटली दोस्तों ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर में मैसिव अटैक का परफॉर्मेंस भी हुआ, जिसे फैंस ने बहुत इंजॉय किया। और अपकमिंग मंथ्स में भी ब्रिस्बेन में कॉन्सर्ट और एंटरटेनमेंट इवेंट्स के लाइनअप स्ट्रांग रहने वाले हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए भाई 2026 का जो कैलेंडर है डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। और एक नाम जो ब्रिस्बेन म्यूजिक लवर्स फ्यूचर में देख सकते हैं वो है एलेक्स वॉरन। जी हाँ, जिनकी जो 2026 टूर डेट्स है उसमें ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर भी इंक्लूडेड है। सो म्यूजिक लवर्स प्लेलिस्ट ना रेडी रखिए। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हां जी, तो दोस्तों अब वक्त है आज की ब्रिस्वानी मॉर्निंग मोटिवेशन का। कभी कभी दोस्तों हम अपनी लाइफ को ना दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। किसी का करियर आगे जा रहा है, किसी की फैमिली लाइफ परफेक्ट लग रही है, किसी को सक्सेस जल्दी मिल रही है, और फिर हम सोचते हैं मेरा नंबर भाई कब आएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर किसी की जर्नी का टाइमिंग जो है वो अलग होता है। आप लेट नहीं है, आप बस अपनी जर्नी पर है। इसीलिए आज एक काम जरूर कीजिए, अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए और अपना कल वाले जो वर्जन है उसे जरूर कंपीट कीजिए। स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। आज का दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस कल से थोड़ा बेटर होना जरूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ अब वक्त होता है आप सभी से टाटा बाय बाय कहने का, क्योंकि आज हमने बहुत सारी बातें की हैं एंड आई होप आपको अच्छी जरूर लगी होगी। तो ब्रिस्वानी मॉर्निंग शो का आज का ब्यूटीफुल आवर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। आज पीपल्स डे है, तो अगर आप एक जा रहे हैं, हैव फन, स्टे सेफ एंड मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज। और अगर आज आप घर पर हैं तो कॉफी बनाएं, फेवरेट म्यूजिक लगाएं और भाई क्या है, अपना डे जो है ना स्लो एंड हैप्पी रखिए। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। रिमेंबर दोस्तों, यू डोंट नीड टू हैव एवरीथिंग फिगर आउट टुडे, बस एक स्टेप लो फिर नेक्स्ट स्टेप। एंड हैव अ ब्यूटीफुल वेडनेसडे ब्रिस्बेन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड कीप शाइनिंग। सो आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, दीजिए मुझे इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्पेस की दुनिया में नए शिखर पर भारत, नासा ने अपने मून बेस मिशन में पार्टनर बनने के लिए बुलाया। अमेरिका ने भारत को नासा के बड़े मून बेस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है, जिसे चांद पर इंसानियत की पहली परमानेंट आउटपोस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ये न्योता 5 और 6 अगस्त को बंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में हुई नवी इंडिया अमेरिका स्पेस ज्वाइंट बुकिंग ग्रुप मीटिंग के दौरान दिया गया था, लेकिन डिटेल्स अब सामने आई हैं, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म में इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन का अगला बड़ा चैप्टर बन सकता है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा, दमिश्क की अदालत ने सुनाया फैसला। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को दमिश्क की एक आपराधिक अदालत ने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। सीरिया के 14 साल के संघर्ष में लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। उनके छोटे भाई माहिर अल असद, जो सीरियाई सेना के एक पूर्व अधिकारी थे, को भी मौत की सजा सुनाई गई है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। अब वंदे मातरम का अपमान होगा अपराध, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून हुआ लागू। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से वंदे मातरम बिल को मंजूरी मिलने के बाद 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब ये कानून बन गया है। इस कानून के लागू होने से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जानबूझकर गाने से रोकना या उसमें बाधा डालना अपराध माना जाएगा। इस बिल से इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को मिलती है। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार की दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी की खारिज, मर्डर केस से जुड़ा है मामला। भारत की ओलंपिक में अगुवाई कर चुके रेसलर सुशील कुमार की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुशील पर पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। इसी मामले में वो जेल में है और कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुशील की जमानत याचिका खारिज की। यदि अब तक की प्रमुख खबरें, अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। जितने लोग आज ब्रिजबन में छुट्टी पर है और जो ओवरसीज से सुन रहे हैं, जी हाँ प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अमिता आपको भी नमस्कार।
2: आई थॉट यू आई एम इनविजिबल। नमस्ते एवरीवन। Namaste, Bhaiji.
1: Namaste.
2: You sniffing and yeah. What have you. So everyone, it is 7 degrees at the moment here where we are.
1: Oh, really?
2: Yeah. What do you mean really?
1: I didn't feel it.
2: Of course you wouldn't feel it. You're all warm and cozy. Ask me, I felt it walking again from the car to here.
1: I know. So, dosto. यहाँ ब्रिस्बेन में आज एक्का हॉलिडे। एक्का है ऐसा चीज है जो हवा तेज गति से बहती है, उस समय सब अपने फार्म की चीज दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, फिर बीमार होकर लौटते हैं।
2: हाँ, that's but in saying that they're giving free flu shots at the Ekka. They got a pop-up stand and I think it's there from 10 o'clock this morning to 2 o'clock.
1: Well, if I'm not mistaken. You know that. Eh? I didn't get this year.
2: No, I got mine.
1: I get every alternate year. I didn't get this year. And the winter is almost, will be gone soon.
2: Yeah.
1: Yeah. Touch wood. Because, see, I don't mingle. Too much.
2: Okay. You ain't single to mingle, you see? All right.
1: Things we say, man, I tell you. वो बचपना है इंसान में, हमेशा रहता है दोस्त। अगर उसको आप खो देंगे ना तो फिर जिंदगी गई, ठीक है। बचपना जो है अपना, उसको हमेशा आप पालते रहे। तो आज जो वेदर है, आज के लिए कहा गया है कि आज टुडे है ना,
2: पॉसिबल। ऑफ कोर्स आज टुडे है, व्हाट एल्स वुड इट बी कम।
1: टुमारो फ्राइडे, राइट। तो पॉसिबल शावर, 9 degrees अभी है, आज है यार, कल रात को 7 था ना।
2: नो अभी 7।
1: ओके, आज रात 8 नौ रहेगा शायद, 9:25। और कल के लिए कहा गया है 11:24 रहेगा दोस्तों, और बारिश नहीं होगी। फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी कहा गया है, 11:24 नो रेन। सैटरडे को शावर और 2 millimeters ऑफ रेन। संडे को शावर ओ 2 12:22 रहेगा दोस्तों, और मंडे को शावर ओ 2 12:22, और ट्यूसडे को शावर्स 12:22, 9 millimeters। ओके, दैट्स क्वाइट अ बिट ऑफ रेन, आई मीन नॉट दैट मच, बट कंपेयर टू व्हाट वी बीन गेटिंग ज़िल्ट। या और इप्सविच रोड रोकली क्रैश, साउथ बाउंड जो हुआ था ये क्लियर हो गया दोस्तों। और आज वैसे खास कोई भी बहुत रोड रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिजी में पुलिस ने कहा है कि जो सीरियस क्राइम से जुड़े जो पैसों का ट्रेल फॉलो करने में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी एक बड़ी चैलेंज बन रही है। पुलिस का कहना है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के जो सिस्टम में गैप्स की वजह से क्रिमिनल मनी मूवमेंट की इन्वेस्टिगेशन स्लो हो रही है। अच्छा, व्हाट वुड दैट मीन, क्रिमिनल मनी की। फिजी में पुराने बैंक नोट्स को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। पुराने फिजी जो बैंक नोट्स 10 जनवरी 2027, व्हाई दैट डेट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, 10 जनवरी 2027 से लीगल टेंडर।
2: व्हेन इज एंजीज बर्थडे?
1: Oh yeah, that's right, 10 January. I knew something was ringing bell.
2: Oh my,
1: really. Ooh, Nala
2: she better,
1: going right,
2: she better, Nini, she Nani better not bell. Be listening. Yeah? Okay, back to seriousness.
1: कहाँ पर थे हम? मुंबई की इन्वेस्टिगेशन स्लो हो रही है। फिजी में पुराने बैंक नोट्स को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि पुराने जो फिजी बैंक नोट्स 10 जनवरी 2027 से लीगल टेंडर नहीं रहेगा। और इसीलिए लोगों को अपने पास मौजूद पुराने जो नोट्स के डेडलाइन से पहले एक्सचेंज करने की सलाह दी जा रही है. दिस इज द मोदी मूवमेंट.
2: Yeah, I was thinking that when I heard that previously.
1: One of my friends were in India that time when this thing happened, and she had such a hard time
2: changing. Well, she couldn't change the money because
1: she was just having all kinds of problems.
2: Oh.
1: Sunwa mein aaj se 2026 Korea Story Festival. Right? Korea Story Festival shuru. Ye sab Fiji mein naya naya cheez hone laga hai bhai. Shuru ho raha hai. Festival baad mein Nendi aur Lambasa bhi jayega jahan Korean culture और कोरियन कल्चर और सिनेमा को फिजी के लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा. अच्छा, फिजी के पीस कीपिंग सर्विसेज को भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है. यूनाइटेड नेशंस ने फिजी को लॉन्ग स्टैंडिंग पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन की तारीफ की है. आई मीन फिजी वर डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो दैट. वेल ऑफ कोर्स इट्स टू मेक मनी, बट दे वर ऑलवेज इन अ पीस कीपिंग मिशन. और ऑस्ट्रेलिया न्यूज में, ऑस्ट्रेलिया में 2026 सेंसस कंप्लीट हो रहा है. आई टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. सेंसस का ऑफिशियल डे 11 अगस्त था. ऑस्ट्रेलियंस का को अपना फॉर्म कंप्लीट करना जरूरी है. ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सेंसस प्रोसेस और non-completion ke consequences thand hai ke bare mein information jari ki hai. Would they come after me? No, I think mine is
2: done. Yours is done.
1: Australian economy is juri ek important development mein. Australia ke sabse bada bank ke annual result आज फोकस में है. और एनालिस्ट्स बैंक के 10 बिलियन से ज्यादा एनुअल प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन पर नजर रख रहे हैं. हाउ मच टैक्स विल दे पे? ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम ने अपने डिफेंस रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने पर अग्रीमेंट किया है. दोनों कंट्रीज मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने और एसेंशियल ट्रेड के फ्री फ्लो को सपोर्ट करने के भी काम करेंगे. डिड ऑस्ट्रेलिया एंड वियतनाम आल्सो फाइट विद अमेरिका और समथिंग लाइक दैट?
2: समथिंग यू नीड टू
1: गूगल. देखो दुनिया कैसे बदल रहा है. कहीं पर अच्छाई के बगल जा रहे हैं, कहीं बगल बुराई के बगल हम जा रहे हैं. स्पोर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है. ठीक है, ये डार्विन में 24 के बाद पहला 5-day टेस्ट मैच है. ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक बहुत बिजी 12-month टेस्ट स्केड्यूल की शुरुआत भी है. ठीक है, शेड्यूल जैसे आप समझे. बस आज की इतना ही. और क्या, बस इतना न्यूज़. ठीक है ना?
2: आई थिंक सो. I wonder how people went with the filling in the census.
1: Someone called me and said, what happened? I misplaced the form.
2: No, it was online
1: They didn't know. They asked me. So I said, okay, call my secretary. She will tell you how to go about it.
2: Huh? Call?
1: My secretary. She will tell you how to go about it.
2: One of the days you're going to... You better watch out.
1: She can't answer back, right? Jab tak hai mauka. Jab tak hai. Let's see. Can we see through the window what she's doing? Jab hum apne pareshaniyon bhagwan ko saup dete hain, to dil halka ho jata hai. हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है. बस विश्वास रखिए कि भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं. ठीक है, आप सभी को शुभ प्रभात. और नंबर है 04-3003-1701 या 3279-1701. 1। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों।

0: खत्म हो गया गाना। तो देखिए दोस्तों, आप सभी आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दूर दूर से, बड़ी दूर से आए हैं,
1: दूर से
0: आए, तोहफा लेकर आए हैं आप सब
1: जी।
0: और हम भी यहाँ से प्यार का तोहफा भेज रहे हैं आपके बगैर।
1: हाँ।
0: और अगर आप ये कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, माइनस समवन बिकॉज आई विल बी इन ट्रबल। I'm deeply in trouble. The more I talk about it, the deeper I get in thee.
1: Yes, you know what so I mean? Why are you digging
0: it? Yeah. But it's hard to live it.
1: You're stuck in it.
0: I'm stuck in it so
1: oh,
0: badly.
1: Oh, gosh. Okay, play a song.
0: Huh?
1: Play a song, please.
0: Okay, I'm thinking, which song should I play? Okay, I'm going to play this one, all right? How about this one? जबकि आग लग गई।
2: दूध उबालोगे?
1: You played it already.
0: I did?
1: Yeah.
0: Okay, I played. No, I mean, sorry, I pressed the wrong one. I don't think I played this one. I meant this one, sorry.

0: बिल्कुल कुछ मुझे पता नहीं चला इन्होंने क्या कहा, लेकिन
1: मोचा मोचा,
0: लेकिन बड़ा एनर्जेटिक गाना था दोस्तों, काफी पुराना हो गया ना।
1: या फील्स लाइक अ लॉन्ग टाइम अगो वे।
0: या सो ओके द नेक्स्ट सॉन्ग आई सी बट आई वोंट प्ले, यू प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग।
1: ओके देयर वी गो।
0: ऑलराइट।

0: ओके वी बैक और देख रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कितने कितने लोग आ गए हैं। वाह, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू। आज हम थोड़ा कुछ
1: सिली मूड में हैं।
0: यू डोंट ऐड एनीथिंग इन द कॉफी एवरी वेडनेसडे।
1: आई टोल्ड यू आई पुट
0: कंट्रोल
1: कॉफी शुगर मिल्क water and a lot of love.
0: The same thing you put every day? I mean,
1: yes,
0: like,
1: every single
0: something's not right
1: day.
0: On Wednesdays. Okay. All right. Anywho, a request hai.
1: Haan, ek farmaish hai, from the movie Sing is King.
0: Yeah, I remember
1: so
0: that movie.
1: Here
0: so
1: we go.
0: Yeah.

0: 17 मिनट रह गए हैं दोस्तों 9 बजने में, और 9 बजे हम यहां से निकल जाएंगे दोस्तों, और 9 बजे से आप शताक्षी के साथ हो जाएंगे, 11 बजे भूलना मत संदेश के साथ, और फिर 3 बजे से निविया के साथ आप हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्यक्रम आप सुनते रहे दोस्तों, और रात को फिर से आप हो जाएंगे किसके साथ?
1: What's your name? Wednesday?
0: Today, Wednesday, yeah. Every night you have Punjabi program and also you have Sataakshi, right?
1: Okay.
0: Yeah, yeah. तो चले दोस्तों, अगला जो गीत है, इस गीत को सुनते हैं।

0: और दोस्तों चलते हैं और कुछ 12 मिनट रह गए हैं और हम बदनाम हुए मुन्नी के कारण गाना बजाकर
1: मुन्नी के कारण
0: चलो कल हम पुराने गीत लेकर आएंगे दोस्तों, आप जानते हैं जो पुराने गीतों के आशिक हैं, आपके लिए खूब अच्छे अच्छे चुने हुए कुछ गीत लेकर हम आएंगे और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप भी कुछ अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और बाकी प्रोग्राम आप सुनते रहें, 3 बजे से भूलना मत, दिव्या के साथ आप रहेंगे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहता है, चुलबुली है और कुछ जानकारी भी लेकर आएंगी कुछ स्टार्स के बारे में या कुछ सिंगर्स के बारे में, कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आती है दोस्तों। और अपना गाना भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस समय, ठीक है, तो जरूर सुनिएगा। और फिर 11 बजे है पंजाबी प्रोग्राम और इस कार्यक्रम के बाद में जैसे मैंने पहले कहा आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ। तो चले अगला गीत सुनते हैं दोस्तों और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, सुनते हैं इस गीत को।

गुड मॉर्निंग है जी, कैसे हैं? मस्त, सब कुछ जबरदस्त। जिंदगी तो मजे में कट रही है ना। देखिए, जिंदगी की खूबसूरती जो है वो इसी में है कि आप इसे मस्ती के साथ जीते रहें। ये 4 दिन की जिंदगानी कुछ ऐसे गुजरनी चाहिए कि इन 4 दिनों का हर एक दिन हमारी बीती हुई उम्र के 100 दिनों पर भारी पड़े, है ना। तो बची हुई जितनी भी हमारी आपकी एज है उसे मस्ती में, मजाक में, हंसते खेलते गुजार दीजिए। ये स्ट्रेस और सीरियसनेस जो है इसे जिंदगी से आउट करिए। और भाई, नई सुबह है, नया मौका है, नई जिंदगी है, नया एहसास है, और इस नए एहसास नई जिंदगी के साथ एक बार फिर से सताक्षी आपके साथ है रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर इट हैपेंस के साथ। सो चलिए भाई, साथ तो बड़ा खूबसूरत और जबरदस्त है, तो इस साथ की खूबसूरती को जरा और निखारते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। भाई, 2 घंटे हमारा आपका साथ रहने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा। गाने भी जबरदस्त हैं, बातें तो होती जबरदस्त हैं जिनके साथ मॉर्निंग बन जाती है। तो उठाइए अपनी कॉफी का प्याला और आ जाइए हमारे साथ आज की मॉर्निंग की बेहतरीन शुरुआत के लिए। और चलिए, अभी आपको आगे लेकर चल रही हूँ इस ट्रैक के साथ। इंजॉय कीजिए और मेरे साथ रहिए इट हैपेंस में, आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर सताक्षी है आपके साथ इट हैपेंस में। और जी देखिए, दिन की शुरुआत तो मतलब हो गई, हम भी आ गए आपसे मिलने के लिए, लेकिन अभी कुछ लोग जरा इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब सताक्षी विश करेगी उन्हें। तो भाई लीजिए, आपका इंतजार बिल्कुल खत्म, क्योंकि हम अब उनको विश करने जा रहे हैं जिनका आज का दिन स्पेशल है। तो भाई आप जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आज आपका जन्मदिन है तो आप को जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। मस्त रहिए जिंदगी में, जबरदस्त रहिए। आज जो खुशियां हैं ना, और जो खुशियां आज मिलने वाली हैं आपको, वो इतनी ज्यादा हो कि उनका असर पूरे साल रहे और हर एक खुशी जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी में हर एक दिन आती रहे पूरे साल। और जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी का दिन, शादी की सालगिरह, बहुत मुबारक। और देखिए, कुछ भी हो जाए ना, इंसान के रिश्ते की सही परीक्षा, सही एग्जाम तब होता है जब जिंदगी का टफ टाइम आता है। तो मुश्किल वक्त में कभी भी एक दूसरे से ना तो नाराज होइएगा, ना एक दूसरे का साथ छोड़िएगा। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके लिए प्ले कर रही हूँ ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्पानी पर। खुद को खुद की आदत डालिए। लोगों का क्या है, वो आज आपके हैं, कल किसी और के हो जाएंगे। हमारे ही आसपास के लोग बदलने में देर नहीं लगाते, बस हालात बदलते हैं और लोगों के रवैये अपने यहाँ बदल जाते हैं। जो आज आपके बिना नहीं रह सकते, वही कल आपको नजरअंदाज कर देते हैं। और इसीलिए खुद को खुद के साथ रहना सिखाइए, क्योंकि आखिर में इंसान खुद के पास खुद ही रह जाता है। तो दूसरों पर जितना कम डिपेंड करेंगे, दिल उतना ही कम दुखेगा। क्योंकि हकीकत तो यही है ना कि रिश्ते हमेशा साथ नहीं देते और खुद का साथ कभी छूटता नहीं है। सो खुद के साथ हमेशा रहिए और खुद की आदत डालिए। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701 FM।

कुछ लोग हमारी लाइफ में हमारे आसपास बहुत अलग और बहुत अजीब होते हैं। वो दूसरों के लिए आपको बड़ा अवेयर करते हैं कि देखो उस आदमी से बात मत करना, उसने ऐसा कर दिया, या वो आदमी तो बहुत धोखा देता है, उससे तुम जितना दूर हो उतना दूर रहो। आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जब देखते हैं कि शाम की कॉफी बंदा उसी इंसान के साथ पी रहा है जिसे दूर रहने के लिए उसने आपको अवेयर किया था। ऐसे लोगों से नफरत करें, मोहब्बत करें, खुद का वेल विशर कहें या खुद को चीट करने वाला कहें, क्या कहें, मतलब आप क्या ही कहेंगे इनको। तो इसलिए भाई आप अपना डिसीजन खुद लीजिए कि किससे आपको बात करनी है और कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, क्योंकि दुनिया है बाबू मोशाए और अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करती है। आप अपने हिसाब से कीजिए और सुनते रहिए ठाकुर सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा आपकी शादी का कार्ड। अरे वाह,
1: लाइक इट?
2: या इट्स नाइस।
0: भैया खुद डिजाइन करके गए थे?
2: ये रहा डिजाइन।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा 53,500 समाजिक कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन पर। और इट हैपेंस में अभी हम हैं 3 बैक टू बैक गानों यानी कि गानों की हैट्रिक के साथ। तो चलिए लगाते हैं गानों की हैट्रिक और सुनते हैं ये पहला ट्रैक।

रिया गानों की हैट्रिक का तीसरा ट्रैक आपके लिए आने जा रहा है और इसके उस पार होंगे आपके साथ फिर से बातें और गाने तो हम सुनते ही रहेंगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

अच्छा, जो लोग ना चाय पीते हैं, जिनको चाय की बहुत तलब रहती है, बहुत लत रहती है, सुबह उठते ही बॉस सबसे पहले उन्हें चाय का प्याला चाहिए, ऐसे होते हैं ये लोग। ये लोग ना बहुत क्रिएटिव होते हैं। या उनका कप पे कप खाली होते जाते हैं और उनका क्रिएटिविटी का जो पैमाना है वो बढ़ता चला जाता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सोच सोच के हर काम करते हैं। कॉफी के कप पर एक कप लेकर कॉफी का बैठ जाएंगे और उनका मंथन इतना चलता है ना कि बस उनके सारे गप जो है वो कॉफी पर होते हैं। गपबाज बहुत होते हैं वो लोग जो चाय ज्यादा पीते हैं। जी हाँ, गप्पे एक बार शुरू हो गई फिर यार बहुत शाम निकल जाए, बस थोड़ी थोड़ी देर में आप उनको चाय देते जाइए, उनकी गपबाजी जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। खुश मिजाज होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं वो लोग। मतलब चाय उनको जिंदगी है उनकी, समझ लीजिए आप, हर खुशी में सबसे ऊपर है ना। कुछ भी हो जाए, चाय उनकी चेहरे पर वो मुस्कुराहट ले आती है कि सारी दौलत एक तरफ और वो चाय का प्याला एक तरफ। तो हाँ यार, मतलब चाय के भी अपने रुतबे हैं। आपको कौन सी चाय पसंद है हमारे साथ शेयर कीजिएगा रेडियो प्रिस्वानी के फेसबुक पेज पर। आपको आगे लेकर चल रही हूँ एक और ट्रैक के साथ, अभी कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं आपके साथ सताक्षी है।

वेलकम बैक इस एक और ट्रैक के इस बार सताक्षी के साथ आप हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर और किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी जीतने की नहीं जीने की चीज है और इसीलिए हमेशा चीजों को खुद को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरों के पीछे मत भागिए बल्कि थोड़ा रुक के जिंदगी को फील कीजिए क्योंकि आखिरी में जीती हुई बाजियां नहीं खूबसूरत यादों से जुड़े पल याद रहते हैं। ये जिंदगी जीने के लिए है, हर चीज के हर इंसान के पीछे भागने के लिए नहीं। कभी थमिए, ठहरिए, खुद से मिलिए और खुद को समझिए।